इंसान को जब थोड़ा सा भी अधिकार मिल जाता है तो वो अभिमानी प्रभु परमात्मा के भी विपरीत बोलने लगता है और ऐसे घिनौने कार्य करता है जिन्हें देखकर देवता भी रो पड़ते।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: जी हाँ, आज सोमवार है और सभी 7:05 हो चुके हैं। आप जहाँ भी हैं अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
3: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर शीतल कुमार के साथ की गई भेंट वार्ता सुनिए। आपकी बातचीत का विषय है माइग्रेन, कारण और उपचार।
4: डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है।
5: थैंक यू
4: डॉक्टर साहब। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपसे एक बीमारी का नाम हमने सुना है माइग्रेन, ये क्या बीमारी है?
5: माइग्रेन हमारे सिर से संबंधित एक बीमारी है जिसमें जनरली हमें सिर का दर्द आमतौर पर दिखाई पड़ता है और इसका जो ट्रेंड है आने का किसी भी पेशेंट में वो रिकरेंट होता है, जिसको हम आम भाषा में कहेंगे बार बार आता है और एपिसोड्स में आता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, कुछ समय के बाद ये रिपीट होता है, बार बार आता है
4: जी।
5: तो जिसमें आमतौर पर सिर दर्द के साथ हमें उल्टी का मन या फिर उल्टी का आ ही जाना या इसमें कभी कभी लूज मोशन जिसको हम डायरिया कहते हैं वो भी इंड्यूस होता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें तेज़ सिर का दर्द और जो कि हमारे आधे सिर में ज़्यादातर पाया जाता है उसके साथ साथ उल्टी का मन होना और उल्टी का कभी कभी आ जाना ही पाया जाता है।
4: ये तो एक तो डॉक्टर साहब सिर दर्द आम जिसे हम कहते हैं, कभी हर इंसान को इस तरह की बीमारी
5: कभी
4: हो जाती है। ये कुछ अलग है माइग्रेन?
5: माइग्रेन अलग अपने इसी कैरेक्टर के साथ है कि ये बार बार आती है। और सबसे पहली बात यह है कि इसमें हम इसको कुछ स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पेशेंट को इस दर्द के आने से पहले किसी हद तक मालूम पड़ जाता है, जिसको हम ऑरा कहते हैं या प्रोड्रोम हमारी एक साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं, तो पेशेंट को इसका आभास पहले ही हो जाता है कि कुछ गलत मेरे शरीर के साथ हो रहा है और कुछ गड़बड़ होने वाली है। आमतौर पर आप ये कह सकते हैं अमूमन 70-80% लोगों के बीच में पेशेंट को पहले ही मालूम पड़ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और जनरली 1-2 के बाद उसको सिर का दर्द शुरू हो जाता है। इस तरह से ये बाकी सिर से अलग है। आपको कई सारे ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो इसको इंड्यूस करते हैं, बार बार इसको लाते हैं, जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना, तेज़ मिर्च मसाले खा लेना, उससे ये एकदम से आता
4: अच्छा,
5: है।
4: इसके रूट्स कहाँ पे हैं अगर हम इसके रूट्स जानना चाहेंगे आपसे?
5: रूट्स जानना चाहेंगे तो इतना क्लियर नहीं है साइंटिफिकली, लेकिन जनरली क्या है कि हेरिडिटरी चलता है, अनुवांशिकी के ऊपर। जैसे कि जिनके पेरेंट्स को अगर ये बीमारी है तो बच्चों में जनरली आती है, आमतौर पे आ जाती है, नहीं भी आए कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन जनरली आ जाती है। तो मेन कॉज तो उसका यही आ जाता है कि हेरिडिटरी आता है। लेकिन अगर शरीर में देखें तो इसको 2 थ्योरीज में बांटा गया है। पहली हमारी वैस्कुलर थ्योरी जिसको हम कहते हैं और दूसरी न्यूरोलॉजिक है। और आम भाषा में वैस्कुलर कहेंगे जो हमारा रक्तवाहिनी है जिसमें हमारा खून दौड़ता है, कुछ उसके कारण है और कुछ हमारी जो नाड़ियाँ हैं जिससे हमारा सारा शरीर चलता है, ब्रेन्स के साथ हमारे मस्तिष्क के साथ, तो उसके थ्रू भी ये आता है।
4: अच्छा डॉक्टर साहब, महिलाओं में अक्सर इस तरह की बीमारी माइग्रेन?
5: जी बिल्कुल,
4: आमतौर पे
5: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। तकरीबन 70-80% महिलाएं इससे ग्रसित होती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट कारण उसका ये माना जाता है कि आमतौर पर औरतों के ऊपर हमारे देश में बहुत ज्यादा वर्कलोड है। देखने में हम आम आदमी कह देता है कि घर में काम ही क्या होता है, लेकिन घर में अगर आप देखें तो बहुत काम होते हैं। अगर एक आम आदमी घर बिठाकर उसको औरत का काम दे दिया जाए तो शाम तक वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। और बड़ी सारी चीज़ें हैं, औरत अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाती है, डिप्रेशन एक साथ साथ एक वर्ड चलता है औरतों के साथ, पैरेलल समानांतर चलता है, क्योंकि सास का प्रेशर होता है, देवर भाभियाँ हैं और चीज़ें हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो एक डिप्रेशन या एक अवसाद जिसको कहते हैं मानसिक तौर पर, औरत उससे ग्रसित रहती है। वो ट्रिगर फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर जो माइग्रेन का है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन से हमारे उसमें ब्रेन में ऐसी चेंजेस आती हैं, न्यूरॉन्स एक्साइट होते हैं सडनली, फिर एकदम से वो किल्ड हो जाते हैं, जिसके कारण औरतों में ज्यादा पाया जाता है।
4: यानी आपका कहना है कि डिप्रेशन से,
5: डिप्रेशन ही इसका
4: माइग्रेन बीमारी का,
5: एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात है, डिप्रेशन ही इसको कॉज कराएगा और स्टार्ट हमेशा डिप्रेशन से होगा
4: जी।
5: वो स्प्रेड करेगी बॉडी में, डिप्रेशन के बाद ही ये चीजें जनरली आती हैं।
4: एक्यूट होता है ये माइग्रेन जबरदस्त,
5: एग्जैक्टली ये बहुत तेज दर्द होता है। पेशेंट का हम जब डायग्नोसिस बनाते हैं तो दर्द के कैरेक्टर से ही बनाते हैं, और आमतौर पर दर्द खत्म होने के बाद ही हम इसका डायग्नोसिस बना पाते हैं कि ये माइग्रेन था, क्योंकि आमतौर पर इस दर्द के बाद पेशेंट इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि उस पर खड़े होने की हिम्मत भी नहीं बचती, दर्द चला जाता है, लेकिन एक दो दिन वो इतना परेशान रहता है, उसकी दर्द की वो हालत कर दी होती है बॉडी की कि वो पूरा ड्रेन्ड होता है।
4: बच्चों में भी क्या इस तरह की बीमारी पाई जाती है?
5: बच्चों से अगर हम ये कहें तो हम लेट चाइल्डहुड यानी कि बच्चों की देर वाली अवस्था, जैसे 12-13 साल की उम्र में ही ये बीमारी आमतौर पर शुरू हो जाती है, लेट 20s अर्ली 30s इसमें ज़्यादा जाती है। फिर एक बार जो हो जाती है तो वो ज़िंदगी भर तो छोड़ती नहीं है, उसे सिर्फ प्रिवेंशन ही रह सकता है और इसका ट्रीटमेंट तो है नहीं कि एक बार ठीक कर दिया दोबारा नहीं आएगा, वो रिकरेंट आएगा, इसीलिए माइग्रेन है
4: जी। जी
5: तो बच्चों में जरूर पाई जाती है लेकिन 12-14 साल की उम्र के बाद, उससे पहले आमतौर पे नहीं मिलती।
4: यानी आप ये मानते हैं कि डिप्रेशन से माइग्रेन की बीमारी?
5: बिल्कुल सही बात है, डिप्रेशन ही इसको कॉज कराती है, हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालती है जिसके बाद ये अपने पूरी तरह से बाहर आता है बीमारी, तो स्टार्ट उसका डिप्रेशन से ही।
4: इसमें कोई सर्जिकल प्रॉब्लम होती है या?
5: जी नहीं, इसमें सर्जिकल कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही सर्जरी की वजह से होता है। हाँ, अगर किसी का ब्रेन सर्जरी करते समय ट्राइजेमिनल नर्व एक होती है हमारी बॉडी में, उसको अगर छेड़ दिया जाए तो पॉसिबल है उससे वो ट्रिगर हो सकता है कभी ना कभी।
4: अच्छा, इस बीमारी से कितनी परसेंटेज ग्रस्त है?
5: बहुत कम, लेकिन आजकल के हिसाब से देखा जाए तो बढ़ रही है, पहले इतना नहीं था, लेकिन आजकल की बहुत भागम भाग जिंदगी, तनाव इतना ज्यादा है, काम का लोड ज्यादा है, तो हर दिन ये बढ़ती जा रही है और प्रेवलेंस इसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्लियर।
4: डॉक्टर साहब, हम आपसे बात करेंगे, आपकी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
5: देखिए, मैं तो किशोर के गानों का ही फैन हूँ, तो अपनी पसंद से किशोर का कोई गाना सुना सकते हैं या फिर सफर फिल्म का एक गीत सुनवा दीजिए। सफर के सारे गाने अच्छे हैं।
4: आपकी पसंद का गीत हम सफर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।
5: थैंक यू।
6: है ये कैसा सफर।

0: डॉक्टर शीतल कुमार आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे। डॉक्टर साहब, बात करेंगे आपसे माइग्रेन के बारे में, हम बात कर रहे हैं
1: जी।
0: अब अगर हम लक्षण की बात करें, अभी आपने बताया कि एक पेशेंट को पहले ही पता चलता है कि मुझे इस तरह की बीमारी होने वाली है, इसके लक्षण क्या है?
1: देखिए, लक्षणों को हम थ्योरेटिकली किताबी भाषा से तो 3-4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। उसके 4 स्टेजेस हम मानते हैं, जिसको पेशेंट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि इसके मेरे को 4 स्टेजेस में ये बीमारी आएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन पढ़ने या समझने के हिसाब से उसको हम इसमें बांटते हैं, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं प्रोड्रोम स्टेज कहते हैं, जो कि बीमारी से पहले की स्टेज होती है। फिर एक ऑरा स्टेज होती है, जिसमें पेशेंट की ब्लरिंग होती है विजन की, साफ दिखाई नहीं पड़ता है, आंखें चुंधियाती हैं, ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। और सबसे जो मेन लक्षण है, तीसरा आता है इसका, सिरदर्द का, जिसको हम हेडेक कहते हैं, जो सबको पता चलता है कि अब हो गया
0: जी।
1: और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे क्लिनिकल लेवल पे डायग्नोसिस बनाने के लिए,
0: इसकी इन्वेस्टिगेशन आप कैसे करते हैं?
1: इन्वेस्टिगेशन जनरली इसकी क्लिनिकल ही होती है
0: जी।
1: इसके ब्लड टेस्ट या ये सब कराने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है, इसकी क्लिनिकल ही डायग्नोसिस होती है। पेशेंट की हिस्ट्री सुनकर, उसको जानकर कि कैसे शुरू हुआ, कितनी देर हो गई, कितना लंबा अटैक आया, उससे ही बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा कन्फर्मेटरी हमारा जो रहता है वो इसका पोस्ट्रोम, यानी कि बीमारी ख़त्म होने के बाद की स्टेज है।
0: कितने दिनों तक माइग्रेन रहता है?
1: आमतौर पे 1 या 2 दिन तक माइग्रेन रहता ही है, कई लोगों को 3-3 दिन भी चलता है। तो एक टर्म होती है 3 दिन से ऊपर जिसका माइग्रेन कंटिन्यू कर जाता है, उसको हम स्टेटस माइग्रेनोसस कहते हैं, कि वो कंटिन्यूसली माइग्रेन के अटैक में रहता है। तो दैट इज़ अ वेरी डेंजरस स्टेज, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, फुल्ली ड्रेनड आउट हो जाता है, एग्जॉशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आमतौर पर अगर हम इसको देखें तो 1-2 दिन तक रहता है
0: जी।
1: तो प्रोड्रोम, जो मैंने आपको बताया कि जो बीमारी के आने से पहले की स्टेज है, उसमें ये समझ लीजिए कि 4-6 दिन या हफ्ता पहले पेशेंट को कुछ ऐसे आभास होने लगते हैं कि कुछ मेरे साथ गलत है, वो सो नहीं पाता है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आता है और अपने किसी काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। तो वहाँ से उसको लगता है कि कुछ गलत मेरे शरीर में हो रहा है। तो सेकेंड स्टेज जो हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं ऑरा की, वो सब मरीजों में नहीं पाई जाती, किसी में जनरली 50-60% तक होती ही नहीं
0: जी।
1: और जिनको होती है उनको जनरली आंखों की रोशनी थोड़ी सी कम होती दिखाई देती है, साफ नहीं देख पाते हैं, अदरवाइज वो ठीक देखते हैं, लेकिन इस स्टेज में वो थोड़ा सा कम देख पाते
0: ये
1: हैं।
0: जो माइग्रेन है, सिर के पूरे हिस्से में होता है या?
1: जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, वैसे तो सेट करेक्टर नहीं है, लेकिन आमतौर पर आपको ये सिर के आधे हिस्से ही मिलेगा, लेफ्ट हाफ में या फिर राइट हाफ में। लेकिन सिम्टम डिफर करते हैं, सेम पेशेंट में बार बार डिफरेंट सिम्टम हो सकते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। हम अगर ये कहें कि सेट पैटर्न पे इसी तरह का दर्द आएगा, ऐसा नहीं। तो ये कई बार फेस से भी शुरू होता है, मुंह से भी शुरू हो सकता है, सिर से भी शुरू हो सकता है। आमतौर पे आप इसको ये सिर के आधे ही हिस्से में मिलेगा, पूरे हिस्से में नहीं मिलेगा आपको। तो हेडेक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, उसके साथ आपको ये जो उल्टी का आना है, ये एक सबसे कॉमन फैक्टर है कि उल्टी जैसा मन करता है या उल्टी आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं से हम डायग्नोसिस बनाना शुरू कर देते हैं कि ये माइग्रेन हो सकता है। और जो पेशेंट ये बताता है कि 1-2 दिन जा चुका है, दवाई थोड़ी बहुत खा के भी नहीं जा रहा है, तो हमारा विश्वास और पक्का होता चला जाता है कि माइग्रेन की तरफ ही है
0: जी।
1: फिर भी 2-3 बार अटैक आने के बाद ही हम उसको लेबल करते हैं कि ये माइग्रेन का दर्द है। अगर पेशेंट बार बार एक ही डॉक्टर से मिलता है और बताता है कि 2 बार मुझे पहले हो चुका है, 3री बार आ गया है, 4थी बार हो गया है, तो फिर हम विश्वास से ये बात कह देते हैं कि अब ये माइग्रेन है और उसकी कुछ प्रिवेंशन है जो आदमी कर सकता है। और हेडेक के अलावा जो हमको, मैं बता रहा था आपको कि जो बाद वाली स्टेज है, पेशेंट ठीक होने के बाद इतना थकान महसूस करता है, वो कुछ काम नहीं कर सकता है, वो हमें और भी ज़्यादा विश्वास दिलाती है कि जिस बीमारी से आदमी ये ग्रसित था वो माइग्रेन ही थी। और इसके अलावा लक्षण तो ज़्यादा इसमें और कोई दिखते नहीं हैं। और ये ज़रूर है कि
0: खास आपने बताया कि डिप्रेशन,
1: डिप्रेशन से शुरू होगा,
0: शुरू हो जाओ,
1: और आमतौर पर डिप्रेशन शुरू होगा, पेशेंट को नहीं पता चलता है। एक आम आदमी अपने आप को डिप्रेशन में नहीं गिनता है, जबकि आज की भागम भाग वाली जिंदगी में डिप्रेशन सभी की जिंदगी का एक पार्ट बन चुका है।
0: किस उम्र में ये होता है?
1: जनरली 20s, जनरली 20s लेडीज में ज्यादा पाया जाएगा। और एक बार किसी में ये एस्टेब्लिश हो गया किसी को माइग्रेन, तो फिर तो रिपीटेड अटैक्स आते हैं, जो माइग्रेन का कैरेक्टर है कि रिपीटेड रिकरेंट अटैक्स, बार बार आएंगे, दर्द होगी और एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न में होगी, इतने दिन की होगी, उल्टी आएगी, कुछ काम नहीं होगा।
0: ये कितनी बार महीने में इस तरह की?
1: अगर हम महीने का हिसाब देखेंगे तो पेशेंट के लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। जिन लोगों का काम इस तरह का है कि उनको भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना पड़ता है, डस्ट में जाना पड़ता है, या फिर जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा होता है, ये सारे फैक्टर उसको बार बार अटैक की तरफ लेके जाएंगे। तो
0: जी,
1: आप ये समझ लीजिए कि अगर उसका प्रोफेशन ऐसा है कि कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर बहुत शोर है, तो महीने में 10 बार भी आ सकता है, 5 बार भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता।
0: जी जी और शरीर के किस अंग को ये नुकसान पहुंचाता है अगर माइग्रेन हो?
1: देखिए, कोई भी बीमारी शरीर में होगी तो सारा शरीर उससे प्रॉब्लम में आ जाता है। अगर हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, हम ठीक से खा नहीं सकेंगे, पी नहीं पाएंगे, अल्टीमेटली पेशेंट का जो इफेक्ट है पेशेंट के ऊपर, माइग्रेन का फाइनल इफेक्ट है, दैट इज़ पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस, ठीक से खाना नहीं खा पाना, और फाइनली जब पेशेंट ठीक से आहार नहीं लेगा तो बॉडी ने वीक होना है और बहुत सारी बीमारियां उसको पकड़ सकती हैं। बट अदरवाइज किसी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट को, हाथ को, पैर को, या किसी ऑर्गन को वो इफेक्ट करता है, ऐसा नहीं।
0: आपने बताया कि इसका इलाज नहीं है,
1: इलाज का एक प्रॉपर तरीका नहीं है।
0: हम इस पर चर्चा करेंगे अगले हिस्से में। अभी अपनी पसंद का एक और गाना आप जरा बताइए, कौन सी फिल्म का गाना है?
1: अक्सर हमराज पिक्चर का गाना सुनता हूं मैं, तुम अगर साथ देने का वादा करो।
0: जी जी, महेंद्र कपूर की आवाज
1: जी, बहुत अच्छा गाना।
0: बी आर चोपड़ा साहब की फिल्म रही है, बहुत ही शानदार फिल्म रही है
1: जी। बिल्कुल।

0: लेकिन बीमारी को हम अप्रूट या उसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। तो अगर पेशेंट कुछ प्रिकॉशंस कुछ सावधानियां बरते तो उसको बार बार ये बीमारी नहीं आएगी। सबसे इम्पोर्टेंटली जनरली लोग क्या करते हैं, दर्द होने पर एक पहला काम होता है पैरासिटामोल की गोली या एक एस्पिरिन की गोली एक ली जाती है।
1: जी,
0: उसमें कुछ गलत नहीं,
1: घरेलू नुस्खा।
0: घरेलू नुस्खा है, सबको पता है, ओवर द काउंटर मिलता है, पेशेंट जाता है क्लिन मेडिकल स्टोर पे, दो गोली ले आता है, खा लेता है आमतौर।
1: वैसे भी ये हम यहाँ पे अपने सुनने वालों को ये कहना चाहेंगे कि खुद आप दवाई कोई मत इस्तेमाल करें।
0: जी, सेल्फ मेडिकेशन अच्छा नहीं होता है, लेकिन जिसका केस इस्टेब्लिश हो गया है कि माइग्रेन है तो उसको कुछ दवाइयाँ अपने पास रखनी पड़ती हैं कि सडनली एक भी बीमारी आती है या दर्द आती है तो उसको एकदम से कुछ इलाज तो चाहिए। लेकिन माइल्ड अटैक में या माइनर अटैक्स में हम ये समझते हैं कि एस्पिरिन या पीसीएम खाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई खा सकता है। प्रॉब्लम ये आती है पेशेंट को डोज का पता नहीं, ले तो सकता है, पीसीएम ले आएगा, बच्चा 12 साल का है, पीसीएम कितना खिलाना है ये नहीं पता है, अपने हिसाब से वो बच्चे को सोचेगा कि 12 साल का है आधी गोली दे देते हैं या उसका एक क्वार्टर दे देते हैं। तो हायर मेडिकेशन या लो डोसेज में एक मेडिकेशन हमेशा नुकसान करेगी, एक प्रॉपर डोज में नहीं आएगी, तो इसलिए डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। लेकिन अगर एक माइनर अटैक है पीसीएम का, उसको पता है, तो वो ले सकता है और उससे चला भी जाएगा, एस्पिरिन की गोली से, पैरासीटामोल की गोली से वो दर्द चला जाता है। प्रॉब्लम आती है जब अटैक थोड़ा मॉडरेट या सीवियर होता है, वहाँ फिर ये सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। तो प्रोफिलेक्सिस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका लाइफस्टाइल। आपको बचना है लंबे सफ़र से, पहाड़ी सफ़र से, भीड़ से, तेज़ मसाले वाले खाने से, और जैसे बहुत शोर वाला इलाका है उससे, धुएं से, पॉल्यूशन से, इन चीज़ों से जितना बच सकेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि कोई त्यौहार का टाइम आ रहा है तो हरिद्वार सब लोग दौड़ते हैं कि आज वहाँ नहाने जाना है, कुंभ का मेला है, कुछ है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो धार्मिक आस्था होती है, जाना होता है। तो जो माइग्रेन का पेशेंट है जिसको पता है कि मुझे ऐसा होता है, तो उसको उस चीज़ में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो पहुँचने के लिए भी भीड़ वाली बस में ठसा ठस भर के जाएगा और उसको जब पहुँचने से पहले उसको माइग्रेन का अटैक डेफिनेटली आ जाएगा। वहाँ जाएगा, रहने की जगह नहीं मिलेगी, बहुत कंजेशन होगी, वहाँ परेशान रहेगा। तो ऐसे में इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए।
1: आपने बताया डॉक्टर साहब कि खाने पीने की चीज़ों को एहतियात,
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि तेज़ मसाला है
1: तेज़
0: आपको
1: मसाला
0: गैस्ट्राइटिस कराएगा
1: वगैरह।
0: और जब भी वॉमिटिंग बाद में इंड्यूस होगी उसमें माइग्रेन को हेल्प करेगा, इसलिए उससे बचना चाहिए। आजकल फास्ट फूड का चलन हो गया है,
1: जी,
0: हर आदमी बर्गर के पीछे दौड़ता है, हॉट डॉग के पीछे दौड़ता है, छोटे छोटे गाँव में भी हॉट डॉग की रेडी आपको देखने को मिलेंगी आजकल। सबसे पहली बात, हाइजीनिक नहीं होता है, साफ़ नहीं होता है, पहली बीमारी वहीं से। अगर माइग्रेन नहीं आएगी तो कोई पेट की बीमारी आएगी। तो मैं माफ़ी चाहूँगा उन सब लोगों से जो हॉट डॉग बेचते हैं, पर अगर वो सफाई से बेचें तो हमें
1: तो फिर
0: इससे कोई
1: कोई बात
0: एतराज़
1: नहीं।
0: नहीं है, लेकिन अगर उसको ठीक से ढक के रखें, बरसात है, चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं, जो चीज़ें ख़राब हैं उनको फेंक दें, नए सिरे से ले लें,
1: डॉक्टर साहब, परमानेंट सोल्यूशन इस डिजीज का?
0: यही है सिर्फ सोल्यूशन। क्योंकि आपको मैंने बताया कि प्रोड्रोम स्टेज है, पेशेंट को मालूम पड़ जाएगा कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, और जिसका एक बार ये डिज़ीज़ इस्टेब्लिश हो गया, डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया कि ये माइग्रेन आपको है, उस पेशेंट को हमेशा अपने कैरी बैग में या अपनी सबसे नज़दीक वाली अप्रोच वाली जगह पे एक मेडिसिन का स्ट्रिप रखना चाहिए कि जो मैं इमरजेंसी में खा सकूं। दूसरी बात, अटैक आने से पहले अगर मेडिसिन ले ली जाती है तो उससे क्या होता है कि अटैक अपने सीवियर फॉर्म में नहीं आता है, वो एक आध दिन में सब्साइड कर जाएगा और दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। तो अगर पेशेंट उस समय लापरवाही करेगा कि सिर में दर्द ही है, चला जाएगा, कल तक चला जाएगा, जिसको पता नहीं है माइग्रेन वो तो ऐसा ही करेगा, लेकिन जिसको पता है कि मुझे माइग्रेन है उसको कभी इससे वो नहीं करना, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।
1: अगर हम ये मान के चलते हैं कि महिलाओं में इस तरह की बीमारी ज्यादा
0: जी
1: होती है, तो
0: बिल्कुल,
1: महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे
0: महिलाएं
1: उनको?
0: हमेशा अपने साथ एक पर्स कैरी करती हैं, हैंड बैग
1: जी
0: कैरी
1: नहीं,
0: करती
1: वो
0: हैं।
1: तो ठीक है, लेकिन और क्या परहेज करने की
0: परहेज यही
1: जरूरत
0: है
1: है
0: कि सबसे
1: भीड़
0: बड़ी
1: भाड़
0: बात
1: वाला
0: है
1: या इलाके में,
0: रिलैक्सेशन, एक बहुत बड़ी बात है।
1: और अपने
0: महिलाओं को
1: अंदर
0: चाहिए
1: तनाव
0: कि
1: तनाव नहीं
0: तनाव
1: रखना है?
0: मुक्त रहना चाहिए,
1: डिप्रेशन,
0: भजन भक्ति तो औरतें करती ही हैं, उससे
1: जी
0: बहुत सारी मानसिक शांति मिलती है। आजकल योगा का चलन हो गया है तो योगा से भी हम इसको रोक सकते हैं। और अगर किसी को मेडिसिन लेनी है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, तो एक सिंपल सा फिनोमेना है कि पैरासीटामोल की टैबलेट और उसके साथ एंटीमेटिक हम कहते हैं जो उल्टी रोकने वाले ड्रग्स हैं, जैसे पेरिनॉम लोग
1: पेरिनॉल
0: लेते
1: वगैरह।
0: हैं, उसको कॉम्बिनेशन में लें तो बहुत अच्छा काम करती हैं। और सिरिटैक में हम एर्गॉट के डेरिवेटिव्स लेते हैं, जो एक वेसोग्रेन जनरली लोग टैबलेट ले लेते
1: जी
0: हैं उसमें
1: बिल्कुल
0: होता है, लेकिन किसी को उल्टी का मन है तो वेसोग्रेन को अवॉइड करना चाहिए।
1: जी,
0: और सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि हमें तनाव मुक्त रहने के लिए कोशिश करनी चाहिए, सुबह की सैर है, योगा है, ये सब चीज़ें आदमी को तनाव से मुक्त करती हैं और
1: बिल्कुल
0: माइग्रेन आने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे।
1: डॉक्टर शीतल कुमार, आप हमारे साथ बने रहे इस आज के कार्यक्रम में। माइग्रेन पे हमने बात की, विस्तार पूर्वक बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पसंद का

0: चलते चलते गीत बताइए, कौन सा हम आपको सुनवाएं।
1: चलिए, अब चलने का समय हो गया है तो एक तेरे घर के सामने एक फिल्म है, उसका गाना है देखो रूठा ना करो, जो मैं अक्सर अपनी वाइफ के लिए गाता
0: जी
1: हूँ,
0: जी जी
1: वो
0: आज
1: आप
0: भी
1: रेडियो
0: आज
1: पे सुनवा दीजिए।
0: चले आज भी हम उन्हीं के लिए ये डेडिकेट करें आपकी तरफ से।
1: जी
0: बहुत बहुत
1: बिल्कुल
0: शुक्रिया डॉक्टर शीतल कुमार, आप
1: जी,
0: हमारे साथ बने रहे इस कार्यक्रम में। माइग्रेन पे आपने तफसीलन जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू वेरी मच।

0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर शीतल कुमार के साथ की गई भेंट वार्ता आप सुन रहे थे। आपकी बातचीत का विषय रहा माइग्रेन, कारण और उपचार। आपके साथ बातचीत कर रहे थे रमेश मराठा।
1: तो श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा?

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं पोटल में नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों कुछ ना कुछ भरपाई होगी जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। पॉजिटिव स्टोरीज की श्रृंखला में लेकर आई हूँ एक और कहानी जिसका शीर्षक है कुदरत के दो रास्ते। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त आरजे शिवानी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर की ओर देखा, बहुत दुख हुआ। वह भाग कर गया, पास ही एक दुकान से बूट लेकर आया और कहा, बेटा बूट पहन ले। लड़के ने फटाफट बूट पहने, बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़ के कहने लगा, आप भगवान हो? वह आदमी घबरा कर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ। फिर लड़का बोला, तो जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात को ही भगवान से अरदास की थी कि भगवान जी, मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लेकर दे दो। वह आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया, पर वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ, साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इस कहानी का मोरल है, जितना हमसे हो सके उतना हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, धन के माध्यम से या नैतिक रूप से। अगर आप भी कहानी लिखते हैं जो मौलिक है, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अगर हमें वो कहानी अच्छी लगी तो हम अपनी आवाज देकर उसे श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। अब लेती हूँ मैं आपसे विदा, मिलेंगे अगली पॉजिटिव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो वितस्ता, खुश रहिए, खुशहाल रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।
1: توشو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ویتستا، ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنین پسندید بات۔

पहचानिए इस मधुर आवाज को, लता मंगेशकर की सदाबहार आवाज है ये। जी हाँ, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। लता जी के एहतराम में फरिश्ते भी झुककर करते हैं सलाम।

गदा की आवाज रूहों को ताजगी बख्शती है। जहां एक तरफ ताज महल प्यार मोहब्बत की जिंदा मिसाल है, वहीं लता की सुरीली आवाज दुनिया का आठवां अजूबा है। 28 सितंबर सन 1929 को लता का जन्म हुआ इंदौर में। पली बड़ी और खेली इंदौर की ही गलियों में।

शुरुआती दिनों में लता ने कुछ एक फिल्मों में अभिनय भी किया, लेकिन लता जी के अभिनय का दौर ज्यादा देर तक नहीं चल पाया और अभिनय तरक कर आपने संगीत की दुनिया में

लता मंगेशकर के पिता का नाम दीननाथ मंगेशकर था और माँ माई। लता की तीन बहनें मीना, उषा, आशा और भाई हृदयनाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया से पहले से ही जुड़े हुए थे। परिवार में लता बड़ी बहन है। लता बचपन से ही कुंदलाल सहगल की गायकी से मुतासिर रही है। लता ने 13 साल की उम्र में मराठी फिल्म किटी हसाल में एक गीत गाया, पर किन्हीं कारणों से इस गाने को फिल्म में शामिल नहीं किया, जिसका मलाल आज भी लता को है।

5 साल की उम्र में लता ने स्कूल में बच्चों को गाना सिखाना शुरू किया। 13 साल की उम्र में दिल की बीमारी के कारण लता के पिता इस दुनिया से चल बसे। सन 1945 में लता ने बॉम्बे यानी मुंबई का रुख किया। मुंबई में बाजाब्ता आपने उस्ताद अमानत अली खान साहब से शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल की। इस दौरान आपने वसंत जोगिलकर की हिंदी फिल्म आपकी सेवा में एक गाना गाया। उस जमाने में गानों में उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए दिलीप कुमार के कहने पे लता ने मुंबई में उर्दू के उस्ताद शफी से बाकायदा उर्दू सीखना शुरू किया। लता की मकबूलियत तब हुई जब मौसीकार खेमचंद प्रकाश की तर्ज पर फिल्म महल का एक गाना आएगा आने वाला मंजर आम पे आया। इस गाने ने संगीत की दुनिया में तहलका मचा दिया।

फिर सन 1950 से लता ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपने संगीतकार अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, नौशाद, एस डी बर्मन, सी रामचंद्र, हेमंत कुमार और खयाम से लेकर रवि, सज्जाद हुसैन, रोशन, कल्याण जी, आनंद जी, वसंत देसाई, सुधीर फड़के, हंसराज बहल, मदन मोहन और उषा खन्ना के साथ खुश असलूबी से काम किया।

फिल्म बेचू बावरा, मुगले आजम, कोहिनूर, आग, आह, चोरी चोरी, श्री 420, सजा, हाउस नंबर 44 और देवदास जैसी मकबूल फिल्मों के गाने गाकर ये साबित कर दिया कि लता सुरीली आवाज की मलिका है। कुछ एक निजी कारणों से संगीतकार एस टी बर्मन के साथ सन 1957 से सन 1960 तक आपने काम करना बंद कर दिया। लता मंगेशकर को फिल्म मधुमति के एक गाने के लिए आचार्य परदेसी सन 1958 में फिल्म फेयर अवार्ड से पहली बार नवाजा गया।

50 के दशक में संगीतकार सी रामचंद्र के साथ लता ने फिल्म अनारकली, अलबेला, आशा, पहली झलक, आजाद और अमरदीप में बेहतरीन गाने गाकर सामीन से वाहवाही लूटी। इसके अलावा 50 के ही दशक में मौसीकार मदन मोहन के साथ फिल्म अदालत, रेलवे प्लेटफॉर्म, देख कबीरा रोया में आपने अपने फन का बखूबी मुजाहिरा किया।

सन 1960 और सन 1961 62 में फिल्म मुगले आजम का गाना प्यार किया तो डरना क्या, दिल अपना और प्रीत पराई से अजीब दास्तां है ये, अल्लाह तेरो नाम। फिल्म कहीं दीप जले कहीं दिल और 20 साल बाद में गाने गाकर लोगों के दिलों पे राज किया। इसके अलावा प्रदीप का लिखा श्रीराम चंद्र की तर्ज पर ए मेरे वतन के लोगों गीत को गाकर उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को रोने पर मजबूर भी किया।

लता मंगेशकर को 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट अवार्ड 2 बार लता ने हासिल किया। इन 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड लता की झोली में आ गया। भारत सरकार ने 1968 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और इसी साल राजीव गांधी अवार्ड और इसके अलावा 2001 में नूर जहां अवार्ड से लता मंगेशकर को नवाजा। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्मों में लता ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। इसके अलावा लता जी ने यश चोपड़ा की कंपनी यशराज फिल्म्स के बैनर तले लगभग हर फिल्म में काम किया। कहा यह भी जाता है कि फिल्म एक्ट्रेस मधुबाला के लिए सिर्फ लता ही आवाज देती रही। मधुबाला फिल्म साइन करने से पहले ये जरूर शर्त रखती थी कि मेरे लिए लता जी ही गाए। ये जुनून था मधुबाला का।

फिल्मों की कामयाबी के लिए लता के गाए हुए गीतों की अहम भूमिका होती थी, चाहे वो फिल्म अनपढ़, जहां आराम, गाइड, मेरा साया, वो कौन थी, अभिमान, अभिलाषा, जीवल थी, प्रेम पुजारी, शर्मिली या पाकीज़ा हो। सन 1972 में मीना कुमारी की आखिरी फिल्म पाकीज़ा के लिए लता ने गुलाम मोहम्मद के साथ

लता मंगेशकर ने 1953 से 1990 तक 4 फिल्मों का निर्माण किया। 1953 में मराठी फिल्म वादाल, 1953 में ही हिंदी फिल्म झांझर, 1955 में फिल्म कंचन और 1990 में फिल्म लेकिन। लता को फोटोग्राफी का शौक है। जहां भी कोई अच्छी या दिल को छू लेने वाली तस्वीर मिली, उसे अपने कैमरे में कैद करती हैं। कुछ नए संगीतकारों में A.R. रहमान, शिवहरी, राम लक्ष्मण, जतिन ललित के साथ काम करके लता अपने आप को भाग्यशाली मानती हैं। खास तौर पे A.R. रहमान के साथ काम करके उनको सुकून मिलता है। कहती हैं A.R. रहमान नई पीढ़ी के सुलझे हुए संगीतकार हैं। फने मुस्यकी में आला मकाम हासिल करने के बावजूद लता ने नए कलाकारों के साथ काम करने में कभी गुरेज नहीं किया। लता के बारे में जितना भी कहें बहुत कम है। लता खुद एक संगीत का खजाना है। कुदरत की तरफ से इस कायनात पर एक नायाब तोहफा, एक ऐसी तख्लीक जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है।

0: पेशे एक खास कार्यक्रम मोहम्मद रफी पर प्रस्तुत करेंगे रमेश मराठा।
1: हजारों साल नरगिस अपनी बीनूरी पिरोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदबर पैदा। ये आवाज सुन रहे हैं आप, जरा पहचानिए तो। ये आवाज आज तलक आपके कानों में रस घोलती आ रही है, आपके दिलों को करार, रूहों को सुकून पहुंचाती आ रही है। ये सदाबहार आवाज किसी तर्फ तारीफ की मोहताज नहीं है, ये आवाज अपनी मिसाल

मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर सन 1924 को गांव सुल्तान सिंह कोटला अमृतसर में हुआ है। दोस्तों, रफी का आगाज तब हुआ जब के.एल. सहगल, मुकेश किशोर कुमार, दलित महमूद और हेमंत कुमार अरूज पर थे। 6 साल की उम्र से ही उनमें गाने की सलाहियतें नमूदार हुईं। तरबियत हासिल करने के लिए आपने लाहौर का रुख किया। लाहौर में आपने अपनी तरबियत बड़े गुलाम अली खान, पंडित जीवनलाल मट्टू और अब्दुल वहीद खान साहब से हासिल की। लाहौर में ही 16 साल की उम्र में आपने संगीतकार श्याम सुंदर की पंजाबी फिल्म गुल बलोच में बहसती गुलूकार मंजर आम पे आए।

बॉम्बे फिल्म नगरी के एक निर्माता नजीर ने सन 1944 में उनकी आवाज सुनी और फिल्म गांव की गोरी में रफी साहब को गाने की दावत दी। उसके बाद मौसीकार नौशाद अली ने फिल्म पहले आप में आपको एक कोरस में

सन 1947 में फिरोज निजामी ने फिल्म जिगनू में मलिके तरन्नुम नूर जहां के साथ आपको गाने का मौका फराहम किया। उसके बाद ये गुलोकार पीछे न देखते हुए आगे की तरफ बढ़ता गया, कहता गया, मैं कहां रुकता हूं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत आगे।

1948 में फिल्म प्यार की जीत का ये गीत एक दिल के टुकड़े हजार हुए मकबूल हुआ। फिल्म बड़ी बहन का गीत मोहब्बत के धोखे में कोई न आए मौसिकी के शायकीन महफिल की जीनत बनता गया।

इसके बाद मोहम्मद रफी के पास फिल्मों की एक लंबी कतार लगी। जैसे मेला, शहीद, सगाई, दुलारी, दीदार, दिल लगी और बरसात, ये सिलसिला सन 1950 तक जारी रहा।

सन 1953 में जब फिल्म बेजू बावरा रिलीज हुई तो रफी की गाय हुई दो भजनों ने कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया। इस तरह से यह बात सिद्ध हुई कि रफी साहब जात पात मजहब और मिल्लत की बंदिशों से ऊपर उठकर फन मौसीकी की खिदमत बखूबी

0: शास्त्रीय संगीत में आपका एक मुनफरिद मुकाम था। सन 1950 से सन 1960 तक आपका दौर गायकी की दुनिया में बेताज बादशाह की तरह रहा।
1: रफी साहब के साथ बहुत सारी यादें होंगी जो आप हमारे सुनने वालों तक इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचाना चाहेंगे।
2: हाँ भाई, रफी साहब मेरे भाई की तरह थे, बड़े अच्छे दोस्त भी थे, मेरे आइडियल भी थे। वो न सिर्फ बड़े अच्छे कलाकार थे, बहुत सुरीले गायक थे, बल्कि बड़े ही खूबसूरत इंसान थे। तो उनका दिल बिल्कुल इतना मोम की तरह था, कभी वो नाराज होते हुए उन्हें मैंने नहीं देखा। इतने बरसों से साथ रहा, कई प्रोग्राम उनके मैंने कंपेयर किए, कई बार बातचीत के लिए गया, मिलने गया, कभी मैंने उनको नाराज होते हुए नहीं देखा। हमेशा बड़ी इंकसारी के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ वो सबसे मिलते रहते थे, और बड़े पाक इंसान थे। न सिगरेट, न शराब, न कहीं उल्टा सीधा बोलना, कुछ नहीं। हमेशा शराफत और इज्जत के साथ वो बात करते थे लोगों से, और बड़ी नरमी से बात करते थे, हमेशा मुस्कुरा कर बात करते थे। इसलिए वो हमेशा लोगों के दिलों में बस जाते थे। आवाज के बारे में क्या कहें, वो तो थे ही बहुत ही सुरीले और बहुत जबरदस्त गायक। हर तरह का गाना बड़ी अच्छी तरह निभा लेते थे, और मैंने इत्तेफाक से कई ऐसे शोज भी कंपेयर किए जिसमें और भी कई लोग साथ में गा रहे होते उनके, यानी किशोर या मुकेश या लता और आशा वगैरह सब कई साथ मिलकर भी कई शोज होते थे। तो फिर भी मैं देखता था कि सुरीले सभी होते थे, मन्ना डे भी, लेकिन रफी की जो पॉपुलैरिटी थी वो कुछ और ही थी। तो वो जब गाना शुरू करते थे झूम कर, तो सब बच्चे सब खड़े होकर झूमने लगते थे। एक बात और थी कि जब भी वो जाते थे किसी शो में, तो बड़े साहब वो इंसाफ पसंद थे। मतलब ये कि वो हमेशा कहते थे, मुझे जिस क्लास में प्लेन में तुम ले जाते हो या ट्रेन में ले जाते हो, उसी क्लास में तुम मेरे सारे यूनिट को ले जाओ। ऐसा ना हो कि मुझे फर्स्ट क्लास में रखो, बाकी को सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में रखो। होटल में भी वो कहते थे, जिस होटल में मैं रहूंगा उसी होटल में सबको रखिए। यूनिट उनके साथ काम करने वालों का, वो भी उन पर फिदा था और बहुत इज्जत करता था उनकी।
1: अमीन साहब, कोई ऐसा इंसिडेंट जो बिल्कुल आपके दिल के करीब है रफी साहब के साथ?
2: इंसिडेंट ऐसा रफी के साथ एक ही बड़ा अजीब सा इंसिडेंट रहा, या यूं कहिए कि नहीं रहा, वो ये था। तो मैंने करीब करीब सभी लोगों को इंटरव्यू किया, एक दो तीन लोग बड़े जो मेरे करीब थे वही रह गए, उनमें से एक थे रफी। अब रफी क्यों रह गए कि मैं कई बार उनके पास जाता था कि रफी भाई, मेरा प्रोग्राम चल रहा है और मैं चाहता हूं कि आप कुछ इसमें बोलें। तो कहते थे, नहीं यार, वो क्या है कि मैं तो गाने वाला हूँ, क्यों बुलवाते हो मुझसे खामखा, तुम एक काम करो
1: जी।
2: जब मैंने बहुत जिद की तो कह रहे, तुम एक काम करो, तुम कोई ऐसा प्रोग्राम करो जिसमें मुझे बोलना ही ना पड़े। तो मैं उलझन में पड़ गया कि यार ये कैसी बात है। तो खैर, वह सोचता रहा। तो इसमें कई बरस बीत गए, और फिर मैंने कोशिश की कि कहीं अगर मेरे पास मेरे लिए नहीं बोलते तो किसी और के लिए बोला होगा। तो सारी दुनिया से मेरे दोस्त बहुत हैं ब्रॉडकास्टर्स, कई सारी दुनिया में फैले हुए। तो मैंने कोशिश की कि रफी का कोई इंटरव्यू मेरे हाथ लग जाए
1: जी।
2: तो कई लोगों ने इंटरव्यू भेजे रफी के, लेकिन उसमें यही था कि वो हाँ हूँ, बहुत अच्छा, हाँ मजा आया, बस इतना बोलकर वो रुक जाते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। बस ज्यादा से ज्यादा एक 25 सेकंड या 20 सेकंड के जुमले मुझे मिल जाते थे, तो एक दो मैंने बजाए, लेकिन इंटरव्यू नहीं हो पाया। तो आखिरकार मैं उनके पास गया एक रोज, रफी भाई ये आपने उलझन में डाल दिया, आप कैसे करें आपको इंटरव्यू। कहने की सीधी सी बात है, तुम ऐसा सवाल करो जिसका जवाब मैं गा कर दे दूंगा
1: जी।
2: मैंने कहा चलो डन, हो जाएगा। और मैं लग गया घर आकर उसके बाद उस टाइप का इंटरव्यू प्लान करने में, लेकिन तब तक बहुत बरस बीत चुके थे, उनकी तकदीर ने मुंह फेर लिया और वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तो उन्हें कभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन इत्तेफाक से एक हुआ ये था कि एक बार मैं दादा बर्मन की मौत पर तमाम बड़े बड़े संगीत सितारों का इंटरव्यू ले रहा था गीतमाला के लिए, तो सबको रिकॉर्ड किया। रफी साहब को रिकॉर्ड करने में गया, लेकिन रिकॉर्डिंग जो हुई उन्होंने स्टूडियो से बाहर आकर की ओपन एयर में। एक तो कुछ बोले नहीं ज्यादा, दूसरे वो कुछ वहां कुत्तों की आवाज आ रही थी भौंकना, और कौओं की आवाजें आ रही थी, तो मैंने उसको इंटरव्यू थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, वो क्रैप कर दिया और नहीं बजाया। मगर उन्हीं दिनों मेरे भाई साहब का, हमीद भाई का इंतकाल हुआ था, तो मैं ज्यादा अटेंड नहीं कर पा रहा था। रफी साहब का ये प्रोग्राम बाकी लोगों की आवाजें भर के मैंने रिकॉर्डिस्ट को दे दिया कि चलो इसको मिक्स करके तुम भेज देना रेडियो सिलोन। तो हुआ ये था, जिसका बाद में मुझे पता चला कि मेरे राइटर जो थे रियाज सैयद साहब, बहुत अच्छे काबिल राइटर थे, तो मेरी गैर मौजूदगी में वो गए रफी साहब के घर और कहने लगे साहब अमीन साहब तो आपको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मैं गुजारिश करता हूँ थोड़े कुछ जुमले बोल दें आप दादा बर्मन के बारे में, तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका
1: जी।
2: तो उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू दिया और वो रियाज साहब वापस लाकर मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने रिकॉर्ड इसको भी दिया, और वो इंटरव्यू उनका ट्रिब्यूट टू बर्मन दादा वो ब्रॉडकास्ट हुआ, जो मुझे जिसका पता ही नहीं चला कई वर्षों बाद तक। तो वही एक मेरी अपनी रिकॉर्डिंग में बस वही एक चीज मेरे पास है रफी की कही हुई, बर्मन दादा और जय किशन और मदन मोहन जैसे लोग इस दुनिया से जाते रहे तो हमारा संगीत तो सुना हो जाएगा, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा।
1: अमीन साहब, रफी साहब का कोई ऐसा गाना जो रफी साहब के दिल के बिल्कुल करीब था?
2: भाई एक गाना है, वैसे तो उनके कई गाने मुझे बहुत पसंद हैं, मसलन गाइड की बहुत गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन एक गाना जो उनके दिल के भी करीब हो और मेरे दिल के भी करीब उनकी याद आते आते हुए, वो गाना है रोशन साहब के म्यूजिक में फिल्म चित्र लेखा का
1: जी।
2: के मन रे तू काहे नदीर धरे, और एक एक जुमला उसमें बड़ा अच्छा था, एक एक एक पंक्ति एक मिसरा साहर ने लिखा था कि कोई न संग मरे, तो ये हमें हमेशा इत्मीनान दिलाता है कि भाई मौत तो आनी है सबके लिए, लेकिन कुछ ऐसा कर जाओ जिंदगी में कि मौत के बाद भी हमारी याद जिंदा रहे, और यही बात रफी साहब ने कायम रखी अपने जाने के बाद भी। आज भी उनके गीत बजते हैं और हम उन्हें सुनते हैं और खुश होते हैं और अपने जीवन में रस खोलते हैं, और वो सुकून आता है उनकी आवाज से कि हाँ भाई एक इंसान था जो नेक भी था, शरीफ भी था और सुरीला भी था, और हमारे दिल में आज तक बसा रहा है और हमेशा बसा रहेगा।
0: रफी साहब ने लगभग हर संगीतकार के साथ काम किया, अनिल बिस्वास, श्याम सुंदर से लेकर हुसनलाल भगतराम, नौशाद से लेकर एस डी बर्मन, मदन मोहन से लेकर ओ पी नैयर, शंकर जयकिशन से लेकर कल्याण जी, आनंद जी, रवि से लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन से लेकर बप्पी लहरी तक,

रफी साहब अशार अल्फाज की बारीकियों और किरदार की नजाकतों को मद्देनजर रखते हुए अपनी आवाज का जादू जगाते थे और ऐसे ही अदाव अंदाज से लाखों परिस्तारों के दिलों पर राज

कुछ गीत रफी ने इस तरह से गाए जिनमें उम्र की कोई बंदिश नहीं थी, जैसे तस्वीर बनाता हूं फिल्म दीवाना से। बड़ी देर भाई फिल्म बसंत बहार से, ऐसे तो न देखो फिल्म तीन देवियां से, सुहानी रात ढल चुकी फिल्म दुलारी से, मन मोरा बावरा फिल्म रागनी से, न किसी की आंख का नूर हूं फिल्म लाल किला से, जो बात तुझ में है फिल्म ताजमहल से, रोशन तुम्ही से दुनिया फिल्म पारसमनी से, फिर वो भूली सी याद फिल्म बेगाना से।

रफी साहब में एक खास बात यह भी थी कि वो अपनी आवाज को किसी भी सांचे में डालने की, किसी भी रस में पेश करने की सलाहियत रखते थे। खाओ शहनशाही जज्बात दिलीप कुमार हो या मस्ताना देव आनंद, उछलता कूदता शम्मी कपूर हो या पारंपरिक भक्ति रस में डूबा हुआ भारत भूषण, हास्य रस में नहाया हुआ जॉनी वॉकर या महमूद हो, गरज यह है कि रफी ये तमाम सलाहियतें रखता था।

ये सही है कि मोहम्मद रफी आज नहीं है, लेकिन उसकी आवाज आज भी कई संगीत प्रेमियों की जीने का सहारा बन चुकी है। कई नए कलाकारों के लिए मशले राह साबित हुए हैं और उन्होंने रफी साहब के अंदाज को अपना कर अपना लक्ष्य तय किया है।

0: सन 1971 में रफी साहब गायकी की दुनिया में सरफिरिस्त रहे और इसी साल आप हज पर चले गए।
1: खुदा अपने वलियों से होता है राजी।
0: हज के फराइज अंजाम देने के बाद मौसीकी की दुनिया को अलविदा किया और आप अपने फर्जंद के साथ लंदन में कयाम करने लगे। इस फनकार की गैर हाजिरी को सामीन ने बर्दाश्त नहीं किया और रफी को गायकी की दुनिया में वापस लाने में कामयाबी हासिल की।

मोहम्मद रफी ने चंद एक ममालिक को छोड़ सारी दुनिया का दौरा किया। रफी न सिर्फ एक महान गायक कलाकार ही थे बल्कि अजीम शान शख्सियत के मालिक भी थे। वो सादा नरम तबीयत और खुदा का खौफ रखने वाले इंसान थे। वो

0: रफी ने अपने जमाने के लगभग सभी को सिंगर्स के साथ काम किया। लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, शमशाद बेगम, सुरैया, मीनू परशोत्तम और सुलक्षणा पंडित।
1: तुम अकेले तो कभी बाग में जाए।
0: और ये सभी गाने मकबूल भी।

0: आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी पर मबनी ये प्रोग्राम, प्रस्तुत करता रमेश मराठा।
1: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो विद अ स्टार, हम सफर जिंदगी का।
2: नमस्कार, 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता। रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त, रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। आज आपके लिए एक खास प्रोग्राम लेकर दोबारा हाजिर हुआ हूं। और आज के प्रोग्राम का शीर्षक है कसक एहसासों की। बहुत सी बातें जिंदगी के बीच में बीतती हैं, वक्त बीत जाता है, लेकिन वो चुभन, वो कसक, वो कभी खत्म नहीं होती। और आज आप सबकी उन्हीं कसकों को दोबारा से उभारने के लिए मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूं, आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर जिसका नाम है कसक एहसासों की। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। लेकिन मैं स्वयं चाहता हूं कि गानों के साथ साथ में आप लोगों से बातचीत भी करता रहूं और अपने ख्यालात भी आपके साथ में बांटता रहूं, क्योंकि अश्क आंखों में उठाते हुए थक जाता हूं, बोझ पानी का उठाते हुए थक जाता हूं। पांव रखते हैं मेरे जज्बातों पे जो, वो क्या जाने मैं निशानात मिटाते हुए थक जाता हूं। भाई सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया हुआ और आनंद बख्शी का लिखा हुआ बॉबी फिल्म का

अब अक्षयों को पास में रहने दिया या नहीं रहने दिया, ये तो ये दोनों लव बर्ड्स ही जाने। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप हमारे से रेडियो वितस्ता से प्यार करेंगे ना, तो हम जिंदगी भर निभाने का वादा करते हैं आपसे। क्योंकि नाम की दोस्ती, काम की यारी, दूसरों की तरह ये आदत नहीं हमारी। अगर आप भरोसा करेंगे तो हम भी आप ही के सहारे का भरोसा करेंगे। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो लता मंगेशकर जी ने सफर फिल्म के बीच में और कल्याण जी अंजी के संगीत में कहा था।

आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता 90.0 FM पर और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा, आपके दिल के जज्बातों को पेश कर रहा हूं आप ही के कार्यक्रम कसक एहसासों की खिल। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। बाहर सावन बरसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बदरा नैनों में छाता है ना, तो दिल पर भी फर्क पड़ता है और जहन पर भी फर्क पड़ता है। फिल्म मेरा साया में लता मंगेशकर को सुनिए, मदन मोहन के संगीत में, जिसके बोल लिखे हैं राजा मेहदी अली खान ने।

हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। क्यों तलाश रही है तेरी बेताब निगाहें हमको, क्यों तलाश रही है तेरी बेताब निगाहें हमको, खुद में झांक तेरी आंखों में दिखाई देंगे, खुद में झांक तेरी आंखों में दिखाई देंगे। और महबूब जब आसपास कुछ वक्त तक नहीं दिखाई देता ना, तो फिर दिल ही कहता है, दिल जो इज्जत फिल्म के बीच में लता मंगेशकर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में साहिर लुधियानवी की कलम से कहा था, आइए हम सब भी सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

सलीके से हवाओं में भी खुशबू घोल देते हैं, सलीके से हवाओं में भी खुशबू घोल देते हैं। कुछ लोग दिल की बात आंखों से ही बोल देते हैं। भरोसा फिल्म में लता मंगेशकर को सुनिए। संगीतकार हैं रवि और गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण।

0: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: बहुत से कस्में वादे होते हैं मोहब्बत के बीच में, लेकिन बहुत कम वायदे हैं जो पूरे हो पाते हैं। हालांकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं। चलिए छोड़िए उनको, बात वो सुनिए जो मैं कहता हूं आपको, कि दिल में मतलब और जुबान से प्यार न कर, दिल में मतलब और जुबान से प्यार न कर, मेरे महबूब मोहब्बत में ऐसा कारोबार न कर, मेरे महबूब मोहब्बत में ऐसा कारोबार न कर। नौजवानों को हम भूल नहीं सकते, आज इनके लिए भी पेश है ये आजकल का गीत, जिसको सचिन जिगर और साथियों ने गाया है, और सचिन जिगर ने ही इसमें अपना संगीत दिया है। आइए इस गीत के साथ भी हम लोग थोड़ा आनंद लेते हैं और फिर गीतों के नगमों के इस सफर को आगे बढ़ाएंगे।

पसंद एहसासों की के इस प्रोग्राम में अब हम वक्त के उस पड़ाव पर आ पहुंचे हैं जहां हमारा और आपका फिलहाल बिछड़ना तय है। क्यों? क्योंकि वक्त अब हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम आपको और ज्यादा इन एहसासों की कसक महसूस करा पाए। इसलिए अब पेशे खिदमत है हमारा ये आखिरी गीत, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर कहेंगे कि अपनी परछाई में जुल्फे न सवारा कीजिए, अपनी परछाई में जुल्फे न सवारा कीजिए, मैं बन जाऊं आईना बस एक इशारा कीजिए, मैं बन जाऊं आईना बस एक इशारा कीजिए। रेशमा को सुनिए फिल्म हीरो में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

इस खूबसूरत गीत के साथ में हम आपसे चाहेंगे इजाजत। बहुत जल्द फिर मिलूंगा एक और नया प्रोग्राम लेकर। हाँ, आपका दोस्त, आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता है कि अगर आप हमारे को इतना प्यार देते ही हैं तो जताते क्यों नहीं। आपको हमारे प्रोग्राम्स, हमारे गीत या रेडियो विस्तार द्वारा प्रोग्राम पेश किए जाने वाले सभी कार्यक्रम कैसे लगते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें बताइए। और हमें ये भी बताइए कि किस तरह के प्रोग्राम और कार्यक्रम आप और सुनना पसंद करते हैं, ताकि हम वो बनाएं जिसे आप चाहें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 705641310705641310। तो अब अपने रेडियो दोस्त, रेडियो हम सफर नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत। फिर मिलता हूँ एक और प्रोग्राम में एक और नया कार्यक्रम लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी दा।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: पेश है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम को तैयार किया है सामुदायिक रेडियो गुड़गांव की आवाज ने। विश्व टीबी दिवस पर वार्ताकार है आरती। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता आप सबकी अच्छी सेहत और सही जानकारी के लिए हमेशा प्रयासरत है।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती। आज हम आपके लिए एक खास कार्यक्रम लाए हैं विश्व टीबी दिवस के उपलक्ष में, और मेरे साथ हैं भारत के कई उच्चतम डॉक्टर्स। मार्च 24 विश्व टीबी दिवस है। टीबी, जिसे हम तपेदिक या क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसी बीमारी है जिसके दुनिया भर के 1/4 से भी ज्यादा मरीज भारत में पाए जाते हैं। हम सबके आसपास टीबी है, चाहे वो गुप्त हो या सक्रिय। ये जानना बहुत जरूरी है। ये खतरनाक बीमारी है क्योंकि बिना इलाज के लगभग 50% मरीजों की मृत्यु हो जाती है। परंतु टीबी से बचना, उसके लक्षण पहचानना और इसका इलाज सही तरीके से कराना एक बहुत सफल प्रक्रिया है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि आज भारत के सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हमारे साथ रेडियो पर आए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर अनुराग भार्गव और डॉक्टर रजत गोयल। नमस्कार डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर भार्गव और डॉक्टर गोयल। संक्षिप्त में थोड़ा अगर आप बताएं कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, जिसको हम क्षय रोग या तपेदिक भी कहते हैं, वो किस तरह की बीमारी है, कितनी खतरनाक है, फैलती कैसे है और भारत के संदर्भ में टीबी इतनी बड़ी चुनौती बनकर क्यों खड़ी हो गई है।
2: नमस्कार आरती, और आपके श्रोताओं को भी हार्दिक नमस्कार मेरी तरफ से। तो आज हम वर्ल्ड टीबी डे का, जो है हर साल 24 मार्च को वो मनाया जाता है, जब सबको हम याद दिलाते हैं, जैसे आपने कहा कि अभी भी टीबी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जहां तक कि बहुत पुरानी बीमारी है। ये हजारों सालों से मानव के साथ ये बीमारी जो है रह चुकी है और अभी भी फैलती जा रही है। और जैसे आपने कहा, ये भारत में एक बहुत बड़ी चुनौती है, पर दुनिया भर के केसेस में से भारत में 1/4 केस हम यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये बीमारी कैसे फैलती है? ये हवा से फैलने वाली बीमारी है, संक्रमित बीमारी है। जिसको किसी को टीबी हो, फेफड़े में जिसको टीबी हो, और वो व्यक्ति जब खांसी करते हैं या बोलते भी हैं, उनके सांस में ये छोटे छोटे कीटाणु के जो पार्टिकल्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, वो बाहर आते हैं और हवा में फैलते हैं। तो जो लोग उनके आसपास हैं, वो मरीज के आसपास हैं या बहुत साथ रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, वहां पे ज्यादा वेंटिलेशन वगैरह नहीं है, काफी टाइम साथ बिताते हैं, उनके लिए ये रिस्क अधिक है कि उनको भी ये टीबी का इन्फेक्शन जो है वो लग सकता है। अब टीबी में जो है वो एक बहुत यूनिक चीज है कि जितने लोगों को इन्फेक्शन होता है, सब बीमार नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में अपनी इम्यूनिटी होती है, जो नेचुरल इम्यूनिटी है या बिकॉज ऑफ एक्सपोजर वो इम्यूनिटी बनी हुई है, जिससे ज्यादातर लोग जो हैं वो टीबी के कीटाणु जब सांस से अंदर जाते हैं हमारे फेफड़े में, उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं और वो जो है बीमारी उस समय नहीं बनती है। परंतु क्या होता है कि जैसे भारत जैसे देश में, जहाँ पे टीबी काफी कॉमन है, एक्सपोजर सबको ही किसी ना किसी टाइम पे हो ही जाता है, पर ज्यादातर लोगों को टीबी की बीमारी नहीं होती है। परंतु जब किसी भी टाइम अगर हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम वीक हो जाए, जैसे कि शुगर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी हो जाए, या कुपोषण हो, मेल न्यूट्रिशन हो, या फिर HIV जैसे बीमारी हो जिससे इम्यूनिटी कम होती, या कैंसर की दवाइयां ले रहे हैं और किसी टाइप के इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हो, उस समय ये बीमारी एकदम से दोबारा बाहर आ सकती है। इसका मतलब ये है कि जो कीटाणु हैं, ये हमारे किसी अंग में काफी सालों तक चुपचाप बैठ सकते हैं और बाद में वो कभी भी बीमारी बन के दिखा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो फेफड़े में टीबी होती है, वो सबसे मतलब इन्फेक्शियस है और खतरनाक इसलिए है कि उसमें जो खांसी करते हैं उसमें कीटाणु बाहर आते हैं, वो फैल सकते हैं, टीबी जो है वो किसी भी अपने शरीर के अंग को प्रभावित कर सकती है, जैसे ब्रेन में टीबी हो सकता है, किडनीज में हो सकता है, अपने इंटेस्टाइन्स में हो सकता है, और बहुत कॉमनली लिम्फ नोड्स में हो सकता है, जहाँ जब जब बाहर से कोई स्वेलिंग दिखाई देता है वो उसको लिम्फ नोड टीबी कहते हैं। हड्डियों में भी हो सकता है, ज्यादातर उसे दर्द होता है और स्वेलिंग हो जाती है। इसलिए टीबी के जो साइंस और सिम्टम्स हैं वो बहुत वेरीड हैं, बहुत तरह तरह के सिम्टम्स हैं। हमारे लिए चुनौती इसलिए है कि हमारा जो रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, जो सरकार का जो नियंत्रण कार्यक्रम है, वो कई सालों से चल रहा है और पिछले कुछ सालों में उसको थोड़ा ज्यादा इम्पेटस मिला है, उसको ज्यादा फोकस दिया है। प्रधानमंत्री ने ये भी सब घोषित किया था कि भारत में टीबी को कम हटाया जाए, एलिमिनेट किया जाए, और इसके लिए सब प्रयत्न होने चाहिए। तो पिछले कुछ सालों से इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जैसे डायग्नोस्टिक्स। कोविड में हमने देखा कि जो पीसीआर टेस्ट है
1: जी
2: वो लोग कराते थे टेस्ट के लिए, तो उसी तरह से टीबी के लिए भी एक पीसीआर टेस्ट है, जो रैपिड टेस्ट है, जीन एक्सपर्ट उसको कहते हैं, सीबी नैट कहते हैं। अब कई भारतीय कंपनीज ने उसी तरह के रैपिड टेस्ट बनाए हैं, जैसे ट्रू नैट है, और वो तरह जगह जगह में उपलब्ध किए गए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, अर्बन हेल्थ सेंटर्स, अस्पतालों में। तो इसका ये बहुत बड़ा फायदा ये है कि एक ही दिन में टीबी का डायग्नोसिस हो सकता है। जब पुराना टेक्निक वो था कि स्मेयर माइक्रोस्कोपी, थूक को निकाल के उसको स्टेन करके देखते थे, और उससे कई केसेस मिस हो जाते थे। तो बहुत जरूरी है कि जो ये नए टेस्ट हैं, जिसको हम मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक कहते हैं, उनको यूज किया जाए टीबी डायग्नोस करने के लिए। और टीबी के जो ड्रग्स हैं ये भी बिल्कुल फ्री, मुफ्त में मिलते हैं हर कोने कोने में देश के। और कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम भी शुरू किए हैं सरकार ने, और एमडीआर टीबी, जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, उसकी बातचीत अभी डॉक्टर गुलेरिया और बताएंगे, उसके लिए भी एक अलग ट्रीटमेंट प्रोग्राम है। ये सब कुछ मतलब मुफ्त मिलता है। और टीबी प्रोग्राम में ये भी है कि पेशेंट का सपोर्ट, उसका फॉलोअप, उसके बाकी क्या उसके घर के नीड्स हैं वो भी देखा जाता है, सोशल सपोर्ट भी देखा जाता है। पेशेंट को 500 रुपये महीने भी मिलते हैं
1: जी
2: थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये कई कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं सरकार ने, परंतु ये देखा जा रहा है कि टीबी बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसलिए हमें जानकारी सबके आसपास बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि लोग जो हैं उनको आना चाहिए। कई कई बार लोग सोचते हैं थोड़ी सी खांसी हो गई है, बुखार है, ठीक हो जाएगा, या पास में दवा के दुकान में जाके दवाई लेते हैं, पर अगर 2 हफ्ते से ऊपर हो जाए और
1: जी
2: खांसी, बुखार, भूख ना लगना, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, अगर ये कंटिन्यू करें तो किसी भी गवर्नमेंट के डिस्पेंसरी, हेल्थ सेंटर में जाके टीबी का टेस्ट जरूर कराना चाहिए।
1: जी तो आपने बहुत जरूरी जानकारी दी कि ये नहीं है कि हम खांस रहे हैं, कई हफ्ते निकल गए उस खांसी को और हम उसको आम खांसी ही समझ रहे हैं। उसका मतलब है 2 हफ्ते के बाद समय आ गया है कि हम हेल्थ सेंटर जाएं और जांच कराएं।
2: बिल्कुल
1: डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आपसे अगर हम पूछें कि भारत में टीबी के इलाज को लेकर क्या क्या चुनौतियां हैं, कुछ चुनौतियां डॉक्टर सौम्या ने बताई, बट अगर आप बताएं कि टेस्टिंग में, इलाज में, बीमारी आगे ना फैले उसमें क्या चुनौतियां हैं, जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की हकीकत हमारे देश को जकड़े हुए है उसके ऊपर भी अगर आप कुछ जानकारी दें कि ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या है और क्यों ये शुरू हुई।
0: पहले मैं आपको, आरती जी, और आपके श्रोताओं को नमस्कार करूंगा। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अगर हम देखें तो जैसे डॉक्टर सौम्या ने बताया कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो प्रिवेंटेबल है, और अगर ट्रीटमेंट लिया जाए तो क्योरेबल भी है। लेकिन तब भी अगर हम देखें तो इन्फेक्शियस डिजीज में सबसे ज्यादा जो डेथ्स हो रही होती हैं वो टीबी के कारण हो रही है। इसलिए ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम ठीक भी कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं, लेकिन तब भी, इसके बावजूद भी, सबसे ज्यादा डेथ्स इन्फेक्शियस डिजीज के कारण टीबी में हो रही है। इसलिए इसका टेस्टिंग, ट्रीटिंग जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन्फेक्शन को जब कैसे रोके ये भी बहुत जरूरी है। टेस्टिंग का जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि अगर किसी को फेफड़े का टीबी है और तो उसको खांसी, बुखार, अगर वो रहे 2 हफ्ते से ज्यादा ठीक नहीं हो रहा हो, तो ये बहुत जरूरी है कि वो अपना टेस्ट करा के ये पता करें कि उसको टीबी है या नहीं है, और अगर टीबी है तो उसका जल्दी इलाज हो जिससे वो बीमारी आगे और लोगों में ना फैले। इसके साथ साथ और अगर लक्षण हो, जैसे
3: लो ग्रेड फीवर बुखार हो रहा है जो शाम को ज्यादा हो जाता है, भूख लगना कम हो, वजन कम हो, गर्दन में कुछ गांठें बन जाएं, तो आपको अपनी जांच करानी जरूरी है। क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम टेस्टिंग की बात करें, तो जब तक मरीज आगे आएगा नहीं, अपना टेस्ट नहीं कराएगा, तो डायग्नोसिस नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा। दूसरा, कई लोग ये डरते हैं कि हमें टीबी डायग्नोज हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, समाज में क्या होगा। ये समझना जरूरी है कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ट्रीटेबल डिजीज है और किसी को भी हो सकती है।
1: जी
3: तो इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको आगे आके अपना टेस्ट कराना चाहिए। और जैसे डॉक्टर सौम्या ने कहा कि जो फेफड़े का टीबी है, उसमें पहले हम बलगम की जांच करते थे, जो इतना पॉजिटिविटी रेट उसका कम था, 40 से 50% था अगर बलगम आ रहा है। अब नए नए टेस्ट आ गए हैं, मॉलिकुलर टेस्ट आ गए हैं, सीबीनेट है, जीन एक्सपर्ट है, जिससे हम अगर बहुत माइनर सा इन्फेक्शन भी हो, कीटाणु कम हो, तो भी हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं और इसकी रिपोर्ट भी जल्दी आ जाती है और ये भी पता चल जाता है कि ये सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट टीबी है। और
1: अच्छा
3: ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम में हर जगह अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अवेलेबल है। और ये बलगम की जांच भी कर सकते हो, अगर कहीं और भी टीबी हो तो वहां से भी हम सैंपल लेके, चाहे वो गांठ में हो या छाती में पानी हो या पेट में पानी हो, उसकी जांच करके भी ये देख सकते हैं कि टीबी है या नहीं है। तो इसलिए टेस्टिंग जो है ये अब काफी आसान हो गई, और टेस्ट के नए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट आए हैं उससे रिपोर्ट भी जल्दी आ जाती है और उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिटी जो हम कहते हैं वो ज्यादा बहुत अच्छी है। लेकिन लोगों को आगे आके अपना टेस्ट कराना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं कराएंगे, अगर वो अपने टेस्ट नहीं कराएंगे, तो डायग्नोसिस नहीं होगा और बीमारी ज्यादा फैलेगी। ये भी जरूरी है कि हम ये देखें कि ये फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल हो, टेस्टिंग के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, कार्टरेज चाहिए, वो भी सब जगह हो, और सरकार उस पर रेगुलरली काम कर रही है कि टेस्टिंग जो है हर जगह पे फ्रीली अवेलेबल हो। अगर एक दफा डायग्नोज हो जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट की बारी आती है। अब है तो ये ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया के कारण है, इन्फेक्शन है, लेकिन ये जो कीटाणु है, बहुत तेज कीटाणु है, बहुत चालाक कीटाणु मैं कहूँ है, क्योंकि इसमें दो चीजें बहुत है। एक तो ये बहुत जल्दी रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है, अगर हम एक दवाई दें तो दवाई कुछ दिनों बाद असर करना कम कर देती है। और ये लोगों ने पहले देखा, जब ये नई दवाई आई थी स्ट्रेप्टोमाइसिन टीबी के ट्रीटमेंट के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो लोगों ने सोचा हम टीबी पे पूरी तरह से काबू कर लेंगे। उन्होंने सब लोगों को, जो टीबी वाले लोग थे, उनको एक एक इंजेक्शन देना शुरू किया, लेकिन एकदम पता चला कि एक दवाई से ही एक कीटाणु मरता नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंट डेवेल्प करके इसमें असर दवाई का कम हो जाता है। इसलिए टीबी ऐसी बीमारी जिसमें ज्यादा दवाइयां देनी पड़ती, जिससे वो कीटाणु जो है वो पूरी तरह से मर जाए, और अगर उसमें कोई रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी हो वो भी मर जाए। इससे लोग ये परेशान हो जाते हैं कि हमें चार चार दवाइयां लेनी पड़ती हैं, ज्यादा दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम जड़ से बीमारी को खत्म करना चाहते हैं, वो दवाइयां जो है वो सारी जरूरी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर तो ऐसी ज्यादा दवाई दे रहे हैं और अपनी तरफ से वो कम कर देते हैं, जिससे
1: जी
3: आगे जाके उनको रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है और इससे नुकसान ज्यादा होता है। दूसरा चीज ये है कि जो ये कीटाणु को अगर हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये जैसे डॉक्टर सोमे ने कहा कि कभी दफा छुप जाता है, डॉर्मेंट हो जाता है, तो इसलिए दवाई जो है वो लंबे अरसे तक देनी पड़ती है। तो टोटल ड्यूरेशन जो है वो 6 महीने का है। पहले 2 महीने में हम जो इंटेंसिव फेज कहते हैं, ज्यादा दवाई देते हैं, फिर कम कर देते हैं, लेकिन ड्यूरेशन भी कम ज्यादा है। तो टीबी को ट्रीट करने के लिए, चाहे है तो एक आम बैक्टीरिया, ट्रीटमेंट जो है ज्यादा चैलेंजिंग है, ज्यादा दवाई देनी पड़ती है, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए देनी पड़ती है। पर लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर हम ये दोनों चीजें करें, दवाई भी पूरी लें, पूरा ड्यूरेशन लें, तो हम बीमारी को जड़ से निकाल सकते हैं, फिर से तकलीफ नहीं होगी। और अगर हम इन दोनों चीजों में डील कर दें, तो हम इस कीटाणु को एक मौका देते हैं कि वो रेजिस्टेंट बन जाए और आगे जाके फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इसलिए लोगों को ये समझना जरूरी है कि ट्रीटमेंट रेगुलरली लेना जरूरी है और सारी दवाई लेना जरूरी है। कुछ लोग दवाई कम कर देते हैं, कुछ उसका डोज कम कर देते हैं, दोनों से आपको नुकसान होगा। तो ये मरीजों को समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमने टीबी की लड़ाई जीतनी है और आपने बिल्कुल ठीक होना है, तो अपनी दवाई पूरी लें। अगर दवाई लेने से आपको कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि हर एक दवाई के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके लिए हम ऑल्टरनेट दवाई भी दे सकते हैं, डोज एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से दवाई को आप कम ना करें, क्योंकि वो इलाज पूरा करना बहुत जरूरी है।
1: जी
3: अगर आप पूरा इलाज करोगे तो बीमारी को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो ये बात एक बहुत जरूरी है। दूसरा रहा कि इन्फेक्शंस कितना है, हम इसको आगे कैसे रोक सकते हैं। अब टीबी हमारे सारे बॉडी में किसी भी अंग में हो सकती है। लोग कहते हैं कि टीबी कैन इन्वॉल्व एनी ऑर्गन, एंड कॉज एनी टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि अगर
1: ओके
3: टीवी हो तो आपका यूट्रस भी बढ़ सकता है, तो कभी कभी पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं और कई लोगों को लगता है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो इसलिए पर ये बहुत जरूरी है समझना कि जो फेफड़े की टीवी है वो ही ज्यादा इन्फेक्शियस होती है। अगर आपको पेट की टीबी है, स्पाइन टीबी है, रीढ़ की हड्डी की टीबी है या गांठों की टीबी है, आप दूसरे किसी को फैला नहीं सकते, आप ये आप नॉन इन्फेक्शियस हो। तो अगर आपको सिर्फ खांसी बलगम है और बलगम में टीबी डायग्नोज होता है तभी आप इन्फेक्शियस हो। इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं कि अगर किसी को गांठ की टीबी है कि वो अब खाना अलग कर दे, लोगों से मिलना कम कर दे, ये घर वालों से ना मिले, क्योंकि आप नॉन इन्फेक्शियस हो। दूसरा, अगर आपको फेफड़े का भी टीबी है तो अगर आप दवाई अपनी रेगुलरली लोगे तो 3 से 4 हफ्ते में आपके बैसिलरी लोड, जो हम कहते हैं कीटाणु, इतने कम हो जाएंगे और कीटाणु मर जाएंगे कि आप नॉन इन्फेक्शियस हो जाओगे, और फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप किसी और को टीबी दे सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि जो फेफड़े के बाहर का टीबी है वो इन्फेक्शियस नहीं है, और अगर जो फेफड़े में टीबी है वो भी अगर हम दवाई रेगुलरली ले तो 3 से 4 हफ्ते में हम नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं, और उसके बाद हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम औरों को टीबी नहीं फैला सकते। अपना खाने पे और डाइट पे पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो हम जल्दी इस बीमारी से ठीक होंगे। फिर आपने पूछा था एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। अगर हम देखें तो इंडिया में जो एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस का बर्डन है वो काफी हाई है, ऑलमोस्ट हम ये कहते हैं कि 27% ऑफ जो सारे जो एमडीआर के केसेस हैं दुनिया में वो इंडिया में पाए जाते हैं, और ऑलमोस्ट 1.24 लाख पेशेंट्स जो हैं एमडीआर के वो भारत में पाए जाते हैं। लेकिन अगर इसका हम ब्रेकअप देखें तो नए केसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट 2-3% ही हैं। लेकिन
1: अच्छा
3: अगर हम देखें जिन्होंने ऑलरेडी पहले ट्रीटमेंट टीबी का लिया हुआ है उनमें ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम एमडीआर कह रहे हैं वो ऑलमोस्ट 11 से 16% है। इसका ये मतलब कि जिन लोगों को पहले टीबी हुआ है और अगर उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा उन्होंने इरेगुलर किया है तो उनको फिर रेजिस्टेंट टीबी होने के कारण चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए जैसे मैं पहले कह रहा था कि आपको अपने इलाज पूरा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इलाज पूरा नहीं करोगे तो आपको रेजिस्टेंट टीबी के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। और इसका कारण क्या है? एक कारण तो यही है कि अगर आप दवाई पूरी तरह से नहीं ले रहे हो उससे हो सकता है, कई दफा ये भी हो सकता है कि आपने बीच में दवाई छोड़ दी फिर ली, उससे भी रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है। कई दफा अगर आपको किसी और व्यक्ति से आप कॉन्टैक्ट में आए जिसको रेजिस्टेंट टीबी था तो आपको वही इन्फेक्शन हुआ, जो कीटाणु
1: अच्छा
3: ऑलरेडी रेजिस्टेंट बन गए थे, तो उससे भी कभी कभी एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है समझना कि टीबी का जो ट्रीटमेंट जो रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है वो कई इट इज जो हम कहते हैं मैन मेड प्रॉब्लम है। अगर हम प्रॉपरली ट्रीट करें इसको तो हम रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस को कम कर सकते हैं। तो इट इज व्हाट वी से फेलियर टू टेक द ट्रीटमेंट नॉट फेलियर ऑफ द ट्रीटमेंट।
1: जी
3: अगर
1: जी
3: हम दवाई नहीं लें तो रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होगा, अगर हम दवाई पूरी लेंगे तो हम रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस को रोक सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम डायग्नोसिस जल्दी करें, ट्रीटमेंट पूरा करें, और इससे घबराएं नहीं कि हमें टीबी हो गया तो हम दवाई ना लें। अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो हम एमडीआर के केसेस को कम कर सकते हैं। एमडीआर में जो चैलेंज है वो टीबी से जो हम आम टीबी कह रहे हैं उससे ज्यादा है, क्योंकि इसमें दवाइयां भी अलग सी हैं, दवाइयों का ड्यूरेशन भी लंबा है और दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा हैं। इसलिए एमडीआर टीबी अगर किसी को हो जाता है तो उसको फिर पूरा इलाज करना चाहिए, और इसमें सरकार के बहुत ज्यादा स्कीम्स हैं, सारी दवाई मुफ्त मिलती है। अगर हम टीबी की बात करें तो डॉट सेंटर से आपको दवाई सारी मुफ्त मिलेगी, जैसे डॉक्टर सोमिया ने कहा कि और भी कई गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी हैं,
1: सुविधाएं
3: जैसे निक्षय पोर्टल में आपको पैसे भी मिलेंगे, न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो हम सबकी चीजें अगर हम साथ साथ करें तो ड्रग सेंसिटिव और ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस दोनों का ट्रीटमेंट फ्री है, दोनों की दवाइयां भी अच्छी हैं, और नई नई दवाइयां भी आई हैं जो अवेलेबल हैं सरकार के थ्रू, तो उससे काफी हद तक लोग ठीक हो जाते हैं, उसका क्योर भी हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि टीबी से घबराना नहीं है, ये एक पूरी प्रिवेंटेबल और क्योरेबल डिजीज है, लेकिन इसका इलाज लंबा है और वो करना बहुत जरूरी है।
1: शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर रणदीप। अब हम चलते हैं डॉक्टर अनुराग भार्गव के पास। डॉक्टर अनुराग, हर साल 28 लाख भारतीयों को सक्रिय यानी एक्टिव टीबी होता है और अनुमानित 3 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि अभी भी टीबी के विरुद्ध कोई कारगर टीका इजाद नहीं हुआ है, तो आप टीबी से बचाव के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं? आपने इस पर झारखंड में भी एक शोध किया है, इस पर सुझाव और जानकारी हमारे साथ और हमारे श्रोताओं के साथ साझा करिए।
4: पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसे डॉक्टर गुलेरिया और डॉक्टर सौम्या ने बताया है, उन्होंने जो जानकारी दी कि टीबी एक, हालांकि इसके लिए 100% कोई वैक्सीन नहीं है, फिर भी ये कई हद तक प्रिवेंटेबल है। और जैसे डॉक्टर सौम्या ने बताया कि सबसे जो हमारे पास ठोस चीज है इसको रोकथाम करने के लिए, वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति है, इम्यूनिटी है। तो अधिकांश लोग जिनका टीबी के कीटाणु से सामना होता है, वो सक्रिय टीबी में वो परिवर्तन नहीं होता है, वो गुप्त गुप्त संक्रमण या गुप्त या टीबी इन्फेक्शन के स्टेज पे ही रह जाता है। तो अगर हम, और मैं अब थोड़ा सा, क्योंकि तकनीकी जानकारी साझा हुई है, मैंने ग्रामीण एरिया में करीब 15 साल काम किया, छत्तीसगढ़ में और फिर झारखंड में एक शोध कार्य में। तो वहाँ इसकी जो हमको टीबी की समस्या को उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि में भी देखना बहुत जरूरी है। तो हम कहते हैं कि सबको टीबी हो सकती है, मगर टीबी के कीटाणु से सामना, गुप्त संक्रमण का जो परिवर्तन है असक्रिय टीबी में, और उसके बाद जो कुछ लोगों में मौत होती है, अधिकांश अगर हम देखें तो अभी भी गरीबों में होती है। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये विश्व में हर जगह जहां भी गरीबी है, गरीबी का मतलब ये भी होता है कि उनकी जो रहने की व्यवस्था है, जो खाने खान पान की समस्या है, वो एक चीज है। और दूसरा है ये लोग जो स्वास्थ्य सेवा है उनसे भी उनको उनमें उनको लेने में या उसमें कठिनाई है। तो दोनों पहलू हैं। तो जैसा डॉक्टर सौम्या ने बताया कि अगर हम 5 मुख्य कारण देखें जिसके कारण गुप्त संक्रमण, सक्रिय संक्रमण या एक्टिव टीबी में हो जाता है, उसमें मुख्य कारण इंडिया में कुपोषण है, और खास तौर पे एडल्ट्स में या वयस्कों में कुपोषण भी एक समस्या है। हम ज्यादातर माताओं में और बच्चों में कुपोषण की बात करते हैं, बट इंडिया में अगर हम मेहनत कश लोग देखें उनमें भी कुपोषण है। तो इंडिया में दोनों समस्याएं हैं। कुछ जगह हमें अभी मोटापा की समस्या देखने में आ रही है, मगर अगर हम एक खास वर्ग को देखें तो उसमें कुपोषण अभी भी वो है। और करीब 18% महिलाएं और 16% जो पुरुष हैं वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में उसमें कुपोषण पाया गया। तो अगर हम इन आंकड़ों को परसेंटेज से अगर मिला के देखें, करीब 14 करोड़ लोग इंडिया में वयस्क कुपोषण का शिकार है। और क्योंकि इनमें हर कुपोषित व्यक्ति में टीबी होने की संभावना 3 से 4 गुना होती है, तो जो टोटल टीबी के हम देख रहे हैं करीब 30 लाख केसेस में, एक तिहाई से लेके आधे तक कुपोषण की वजह से ही हो रहे हैं। तो अगर हम एक सामाजिक पृष्ठभूमि में देखें तो टीबी का रोकथाम, जैसे मैंने कहा कि हमारी इम्यूनिटी उसमें मदद करती है, और कुपोषण एक मेन कारण है जो इम्यूनिटी के कमजोर होने का। तो अगर सामाजिक तरीके से जो भी हम करें, चाहे वो खान पान की व्यवस्था हो, चाहे रोजगार का समस्या हो, अगर पोषण का स्तर बढ़ेगा तो टीबी की समस्या हम आधी तक कम कर सकते हैं। और ये सुनने में थोड़ा लगेगा कि इसका कोई प्रमाण है कि नहीं, इसमें प्रमाण आपको यूरोप के देशों में टीबी कई गुना ज्यादा प्रचलित थी, मगर जैसे जैसे वहां सामाजिक स्तर बढ़ा, खाने पोषण का स्तर बढ़ा, वहां टीबी अपने आप कम होती गई। और 1950 में जब टीबी की ड्रग्स आई तो उसमें काफी व्यापक असर पड़ा। तो ये टीबी की जो समस्या है, एक तरफ से तो जो हमारे समाज में, जैसा आपने बताया, गरीबी के साथ कुपोषण जड़ा हुआ है, कई लोगों के दिमाग में भ्रांतियां भी होती है पोषण के बारे में, वो एक अलग चीज है। और दूसरा नंबर में इंडिया में डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का एक टीबी से जुड़ाव है, स्मोकिंग और अल्कोहल, धूम्रपान और अल्कोहल के सेवन से भी एक रिस्क फैक्टर है। तो हम लोगों ने जो झारखंड में शोध किया उसमें ये था कि अगर हम ये पोषण की समस्या को हम लोग एड्रेस करते हैं, उसको हम जो आमतौर पे पोषण में इंडिया में अनाज जो है वो पीडीएस के थ्रू मिलता है, मगर उसमें दालों का अभी प्रोविजन नहीं है। और स्पेसिफिकली शाकाहारी लोगों में जब तक आप दाल नहीं देते तब तक ये बैलेंस्ड डाइट नहीं बनती है, और उसमें फिर प्रोटीन का इम्यूनिटी से एक रिश्ता है। तो हम लोगों ने 3,000 हाउसहोल्ड्स में, मतलब 3,000 परिवारों में, जो जिनमें टीबी के, लंग टीबी के मरीज थे, फेफड़े की टीबी के मरीज थे, जिनके संक्रमण था, उन्हीं के घर वालों में शोध कार्य किया करीब 3 साल तक, कि जो भी और चीजें उनको मिल रही हैं, चाहे वो बीसीजी का टीका है बच्चों को, चाहे वो गुप्त टीबी का संक्रमण की दवा है, उनमें हम लोगों ने साथ में एडिशनल चावल और एडिशनल दाल और मल्टीविटामिन टैबलेट्स दी, और उनको हमने देखा अगले 2 साल तक कि इन पे क्या असर पड़ता है। तो जिन परिवारों में, दो दो परिवार के तो बनाए गए थे ग्रुप, एक में ये एडिशनल चीज दी गई और एक में जो नॉर्मल उनका खान पान था वो। तो जिनमें हमने ये एडिशनल चावल और दाल और मल्टीविटामिन दिए, उसमें 40 से 50% तक सक्रिय टीबी की दर कम हो गई। तो उसमें हम लोगों ने ये, और ये लास्ट ईयर हम लोगों ने ये एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किया, इसके ऊपर काफी अभी प्रतिक्रिया भी हो रही है। तो पोषण अगर एक हमारे यहाँ एक मुद्दा है जो टीबी को बढ़ा रहा है, अगर हम उसको एक सामाजिक रूप में हम इसको एड्रेस करते हैं, और मैं सब फिर भी कहना चाहूंगा कि टीबी कोई एक व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं है, यह हमारी सामाजिक समस्या है, और हम अगर मिलजुल के इसको समझेंगे, इसकी पृष्ठभूमि को, तो हम इसमें बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने देखा कि डायबिटीज के जो मरीज थे, खासतौर पर ग्रामीण एरिया में, उनको उचित पूरा कंट्रोल डायबिटीज का वो नहीं कर पा रहे थे, वो भी एक मृत्यु का कारण बन रहा था मरीजों में। तो कुछ चीजें हम लोगों ने, जो पेशेंट्स की मृत्यु हुई उसमें से हम लोग शोध कार्य में से कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे सामने आए, वो ये था कि अगर हम टीबी की जो मॉलिक्यूलर टेस्ट है, जो बलगम की जांच है, उसको करते हैं, बट साथ साथ अगर हाँ एक पूरे पेशेंट की जांच अगर ठीक तरीके से होती है कि क्या ये चलने फिरने में सक्षम है, क्या इसको सांस की तकलीफ तो नहीं है, इसका बीपी कम तो नहीं है, इसके खून की कमी तो नहीं है, ये जांचें भी हमने अपने मरीजों में करी थी। और जब उनको हम लोगों ने पाया कि बहुत कमजोर है वजन के हिसाब से, या इसको खून की कमी है, जब इस तरह का हम लोगों ने एक उसको रेफरल करने की कोशिश की, तो इससे मृत्यु दर भी हमारे जो पेशेंट्स थे उसमें 35% कम हुई, जो और प्रोग्राम में पेशेंट्स है उसके हिसाब से। दोनों चीजों का मैं कहना चाहूंगा, रोकथाम के लिए अगर हम रोकथाम करने की कोशिश करें टीबी की, तो क्या चीजें हैं जो हमारे समाज में इम्यूनिटी को कम कर रही हैं, चाहे वो कुपोषण हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कुछ पेशेंट्स में एचआईवी की समस्या हो, क्या हम उसको सुधार सकते हैं? और अगर टीबी के मरीज की मृत्यु हो रही है, तो क्या हम स्वास्थ्य सेवाओं को फिर से जरा देख सकते हैं कि क्या जो पेशेंट है उसको पहले 2 महीने में खासतौर पे बहुत उनको खतरा रहता है मृत्यु का, तो क्या हम बेहतर उनका थोड़ा सा देखभाल कर सकते हैं? क्या हर पेशेंट जो अति कुपोषित है, हमारे यहाँ जो पेशेंट्स थे उनका वजन बहुत कम था, औसत वजन करीब 38 किलो महिलाओं में और 42 पुरुषों में था, तो वो काफी कमजोर थे, तो उनको हमको अगर दोबारा काम करने के लिए सक्षम बनाना है तो भी उनका वजन बढ़ाना होगा। तो जो खाने का हम लोगों ने पेशेंट्स में दिया था 10 किलो का फूड बास्केट, वो क्या हम पूरे सारे मरीजों को इंडिया में दे सकते हैं? जैसे डॉक्टर सौम्य ने कहा कि 500 रुपये उनको आर्थिक सहायता मिल रही है, मगर अगर ये सहायता भी मिल जाए, जिसके लिए आजकल एक प्रोग्राम चला है, बट वो यूनिवर्सल अभी भी नहीं हुआ है, जो लोग सामने आते हैं मदद करने के लिए वो है। तो अगर इस तरह की बेहतर थोड़ी सी जो दवाएं हैं उसके साथ साथ ये सामाजिक सपोर्ट और न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल जाए, तो मुझे लगता है कि हम अपने जो अभी उसमें काफी हद तक हम सुधार ला पाएंगे, और खासतौर पे उनके लिए जिनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है।
1: जी, अब हम डॉक्टर रजत गोयल से बात करते हैं। डॉक्टर रजत, टीबी के फैल को रोकने के लिए टीबी का टीका यानी वैक्सीन बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। क्या ऐसा वैक्सीन है जो टीबी से बचा सकता है? और अगर नहीं है तो उसके आविष्कार में हम कहाँ तक पहुंचे हैं?
5: आरती जी नमस्कार, पहले आपको और आपके श्रोताओं को, एटलीस्ट आज हम वैक्सीन की बात करते हैं, ये एक वर्ड हो गया है जिसकी डिमांड आने लगी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि 100 सालों के बाद टीबी की बीमारी के बारे में आपने सब विशेषज्ञों से सुना, इतने सालों के बाद शायद मैं एक वर्ड कह सकता हूँ जो हम बहुत सुनते हैं आजकल रेडियो पे, कि शायद हमारे लिए वैक्सीन के अच्छे दिन आ रहे हैं। लेकिन जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो सिर्फ वैक्सीन बनाना जरूरी नहीं है, वैक्सीन मिलना जरूरी है, कम दाम पे मिलना जरूरी है, और उस वैक्सीन को लेना भी जरूरी है। तो जो जब आप कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो जब भी हमको ये सारी चीजों के ऊपर नजरअंदाज करना चाहिए। आप हम लोग सारी दुनिया और हिंदुस्तान में ये COVID-19 की महामारी हुई, आप हम सब उससे जानकार हैं, और उसमें जैसे टीबी के बारे में आज आपने सुना, ये एक ऐसी बीमारी है ये सब एज ग्रुप में होती है, ये किसी को नहीं छोड़ती, और इसलिए कोई भी वैक्सीन अगर बने तो वो सारी एज ग्रुप के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। दूसरा, आपने वही बीमारी में देखा, कोविड में देखा, कि कभी भी अगर टीका बने तो वो सारी जो भारत सरकार की सेवाएं हैं उसमें उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे वो प्रारंभिक हो

0: रही है, उसकी डिमांड कितनी है, कौन लेगा, उसको कैसे देंगे और किसको सबसे ज्यादा उसका बेनिफिट होगा। जैसे आपने कोविड में देखा और आज आपने विशेषज्ञों को भी सुना कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो जब हम वैक्सीन बनाए भी तो टीबी के पेशेंट को, खासकर उनको जिनको और बीमारियां हों, चाहे वो पोषण कम पोषण की बात हो या डायबिटीज की बात हो, तो उनको भी देना और उनको पहले देना जरूरी होता है। और ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है सोचने के लिए, ताकि जब भी भारत सरकार कोई भी प्रोग्राम रोल आउट करे तो वैक्सीन पहले उनको मिले जिससे उनको सबसे ज्यादा फायदा हो, और उसके ऊपर भी सरकार बहुत सारा काम कर रही है। अब आते हैं वैक्सीन पर से, जो आपका प्राइमरी सवाल था कि टीका बन रहा है कि नहीं बन। तो हम सब जानते हैं कि हम बच्चे जब पैदा होते हैं तो एक BCG की वैक्सीन दी जाती है। तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए हैं दुनिया भर में जिसमें दिखाया गया है कि शायद स्पेशली वो लोग जिनको बीमारियों का बहुत हाई रिस्क हो या जिनको बाकी बीमारियां हों और उससे टीबी से बहुत ज्यादा पीड़ित हों, तो भारत सरकार ने एक नया प्रोग्राम निकाला है जिसको हम BCG रीवैक्सीनेशन प्रोग्राम
1: जी
0: बना रहे हैं और वो सबको दी जा रही है। लेकिन इसके अलावा मैं एटलीस्ट इतना खुश हूं कि आज की तारीख में 3 या 4 ऐसी वैक्सीन के ऊपर काम किया जा रहा है जिससे शायद हमें अब इतने सालों के बाद एक होप है कि टीबी की वैक्सीन बन सकती है, पर आने वाले 3 या 4 सालों में हमारे लिए इसका बहुत शायद हम देखें कि ये बन जाए और ये इंट्रोड्यूस हो जाए हमारे प्रोग्राम में। और हमने ये भी देखा, जैसे कोविड में देखा कि आत्मनिर्भर भारत में हमारे लिए खुद हमारे देश में अगर वैक्सीन बने और वो हमारे जो पॉपुलेशन है उसको ज्यादा इन्फ्लुएंस करे तो उसके लिए हमको ऑब्वियसली बहुत फर्क पड़ता है। तो 3 ऐसी कंपनियां हैं भारत में जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, एक इम्यूनोवैक एक वैक्सीन है, एक BPM करके एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, और एक MTBVAC है जो एक एक नई वैक्सीन है जिसके ऊपर बहुत काम किया जा रहा है और बहुत लेट स्टेज में है। हमारी जो संस्था है वो ग्लोबली इसके ऊपर काम कर रही है, जो काफी सारे विशेषज्ञ आज जो हैं जो आपके प्रोग्राम में भी हैं वो भी इसके सपोर्टिव हैं। तो अगर ये जो जांच चल रही है और जितनी सफलता अभी तक दुनिया भर में मिली है, जब जो हिंदुस्तान में जो जांच चल रही है उसके ऊपर वही रिजल्ट आए जो हमें बाकी जगह मिल रहे हैं, तो वी आर वेरी होपफुल कि बहुत जल्दी एक टीबी की वैक्सीन हम सबको मिलेगी, हम सारी उम्र के लोगों को मिलेगी, हम सबको बहुत फर्क पड़ेगा। और जो हमारा एक विजन है टीबी मुक्त भारत और या WHO का जो प्रोग्राम है टू एंड टीबी कैंपेन, वो बहुत जल्दी सफल होगा।
1: शुक्रिया डॉक्टर गोयल। इस उम्मीद पे हम सभी कायम हैं, पर शायद बचाव अभी अभी भी बहुत जरूरी है।

तो मेरे पेट में टीबी था, क्योंकि मेरे पेट में पेन होना शुरू हुआ था। तो मैंने घर वालों को बताया था कि मेरे पेट में ना बहुत पेन हो रहे हैं। तो मेरे घर वाले बोल रहे हैं, अक्सर होता है खाली पेट में होने से होता होगा, स्कूल टाइम पे जब मैं था तो कह रहा है कि तुमने खाना पीना नहीं खाया होगा टाइम पे, इसलिए पेट में दर्द हो रहा होगा। फिर मैंने मम्मी को बोला कि नहीं, ये 1 महीने की बात नहीं है, ये मुझे काफ़ी टाइम से मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा और एक ही जगह मेरे को पेन हो रहा था, खांसी होने लगा था बहुत ज़्यादा, और जब मेरी खांसी होती थी ब्लडिंग आना शुरू हो गया था। तो मैंने घर वालों को भी बताया था, मम्मी कह रही है कि नॉर्मल है, खांसी होता है तो शायद ज़्यादा खांसने, शायद ब्लडिंग आ जाता होगा कभी कभी, तो थोड़ा धीरे खांसना। फिर डॉक्टर से दवाई ले लेते थे हम, पेन वेन थोड़ा ठीक हो जाता था। धीरे धीरे मेरा बॉडी क्या हो गया, सूखने लग गया, पतला सा होने लग गया मेरा बॉडी। फिर मैं अचानक से बीमार पड़ गया था और काफ़ी फीवर्स होने लग गए थे, मेरे फीवर उतर ही नहीं रहे थे, 5-6 दिन कंटिन्यू का फीवर था। मेरा ब्लड टेस्ट करा ले, सब नॉर्मल था, और मैंने एक्सरा कराया था उसमें भी नॉर्मल था, अल्ट्रासाउंड भी कराया उसमें भी कुछ नहीं था। फिर किसी ने सजेशन किया, एक भैया थे उन्होंने बोला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छे होते हैं, एक बार आप गवर्नमेंट पे जाके देखो, वहाँ पे एक बार इलाज करा के देखो क्या बोलते हैं वहाँ पर। फिर मैं जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, मैंने डॉक्टर से मिला, तो उन्होंने मुझे पहले 1 दिन की दवाई दी, कि 1-2 दिन के पहले दवाई दिया, क्या ये दवाई खा के देखो, इससे आराम होता है तो ठीक, नहीं होता तो आप दोबारा आना हमारे पास। तो जब मैंने दवाई लिया तो मेरा फीवर नहीं उतरा था। फिर मैं दोबारा से हॉस्पिटल गया, फिर उन्होंने मुझे सीटी स्कैन लिखने के दिया कि आप करवा लो एक बार, क्योंकि मैंने अल्ट्रासाउंड और जो एक्सरे कराया था उन्होंने देखा उसमें कुछ था नहीं। उसके बाद हम क्या डिसीजन लेते हैं उसके बाद पता चलता है क्या है आपको। फिर सब सीटी स्कैन करा के लेके आया मैं, तो फिर जब मैं ऑप्सी डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर टीवी का लक्षण लिखा हुआ था और साथ में स्टोन भी था, दोनों साइड में छोटे छोटे थे, पर डॉक्टर बोल रहे कि आपको टीवी है। तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था डॉक्टर के पास ही, और बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था मैं अपने आप को। तो फिर

डॉक्टर मुझसे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या आपको घर में किसी को टीबी हुआ है, या पहली बार आपको टीबी हुआ है, या कभी हुआ हो आपको, या घर में किसी को हुआ कि इसके थ्रू आपको फैला हो। तो मैंने कहा नहीं, घर में किसी को नहीं है। नर्वस मैं डर गया था क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि ये लक्षण हो सकता है, क्योंकि मैं खाना ठीक ठाक खा ही लेता था मैं। हाँ, आई नो, मैं चटपटा बहुत ज़्यादा खाता था जो था। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि टीबी की नॉर्मल है, हो जाता है किसी को भी, पता नहीं चलता, कभी भी किसी को भी हो जाता है, तो इसमें इतनी डरने वाली बात नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप सामने डिपार्टमेंट है वहाँ पर, आप टीबी के डिपार्टमेंट जाके वहाँ पे एक बार अपना दिखा दो रिपोर्ट ही सारे। फिर मैंने वो उनको दिखाया तो कह रहा है नहीं, इसमें डरो मत, जितना आप डरोगे उतना आपको ही हानि होगा, क्योंकि आप उतने ही और बीमार होते जाओगे। तो आप सोचो मत कि आपको टीवी है, बस जैसे जैसे हम स्टेप बताते हैं आपको इलाज का, आप वैसे वैसे करते जाओ। सब कुछ करता था, खेलना कूदना घूमना सब कुछ करता था, पर ये कैसे हो सकता है? मुझे, मेरे माइंड में यही चल रहा था बार बार कि सब तो ठीक है, काम भी अच्छा कर रहा हूँ मैं, स्कूल भी टाइम पे जा रहा हूँ, भारी चीजें भी आराम से उठा ले रहा हूँ, तो मुझे ये कैसे हो सकता है? तो फिर डॉक्टर ने जब मुझे बोला कि पेन होगा क्योंकि पेट में है आपका टीबी, तो पेन होगा, तो अब डरो मत, तो मैं डरा नहीं। उन्होंने जो जो स्टेप बताया मैंने बस उसको फॉलो किया। जैसे जैसे उन्होंने बोला कि ये इलाज करना है आपको इस टाइम पे, या ब्लड टेस्ट करवाना है, या बलगम टेस्ट कराना है, हर टेस्ट का मैंने समय समय पे किया। जब उन्होंने सारा टेस्ट करने के बाद मुझे सजेशन किया कि जहाँ आप रहते हो उस एरिया में भी एक डिस्पेंसरी होता है, तो उस डिस्पेंसरी में आप ये पर्चा दिखाना और दवाई शुरू हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि दवाई आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, आप एरिया में हो उस डिस्पेंसरी से आपको दवाई मिलेगा। तो मैं गया अपने वहाँ पे, वहाँ पे प्रोसेस था, तुरंत ही दवाई नहीं दिया उन्होंने, पहले उन्होंने नाम नोट किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिया। 2-3 दिन बाद उन्होंने, एक महिला थी वहाँ पर, उनको रिस्पॉन्स दिया गया था मेरा 6 महीने की दवाई का, तो हर महीने मेरी दवाई ख़त्म हो गया तो मुझे उनसे लेना था। तो एक ग्रीन कलर का दवाई का पैकेट था, पूरा डोज जो था वो बहुत हैवी था, टाइम के अकॉर्डिंग लेना था दवाई को, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी किसी भी टाइम ले लो, नहीं, क्योंकि एक जो पत्ता था ग्रीन कलर का, उसको आप एक पत्ते में से 3 गोली आपको एक टाइम पे लेना, आपको टाइम फिक्स करना है। मैंने लिया था दोपहर का टाइम, क्योंकि उस टाइम मैं कॉलेज से आ जाता था मैं, तो मेरा कंटिन्यू, फिर मेरा दवाई चला, फिर कंटिन्यू मेरा 6 महीने दवाई चला, उसके बाद फिर मैं ठीक हो गया। तो उन्होंने फिर ठीक होने के बाद मुझे बुलाया था, जब 6 महीने मेरे खत्म होने के बाद मैं लास्ट टाइम उनके पास गया, फिर उन्होंने एक और एक्सरा करने के लिए बोला लास्ट टेस्ट के लिए, तो मैंने वो एक्सरा कराया, तो उन्होंने वो रिपोर्ट को चेक वेक किया, कह रहा नॉर्मल है।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। अंबाला के प्यारे श्रोताओं, आज हमारे पास अंबाला के इतिहास और गर्व से जुड़ा एक बेहद खास तोहफा है। आप सब जानते हैं कि अंबाला का शहीद स्मारक अब बनकर तैयार है। ये वो पावन भूमि है जिसने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई का बिगुल फूंक कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आगाज किया था। ये स्मारक हमारे शहीदों के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है और इसी महान विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए अंबाला के जाने माने संगीतकार श्री विशाल गोल्डी, ओम नमो संट्स, जिन्हें हम विशाल शर्मा के नाम से भी जानते हैं, लेकर आए हैं एक जबरदस्त स्वतंत्रता संग्राम थीम सॉन्ग। ये गीत अंबाला की मिट्टी की कहानी कहता है, उस जज्बे को सलाम करता है जिसने देश को आजाद कराने की लौ जलाई। इस गीत को विशाल गोल्डी और हरजीत बिट्टू ने मिलकर लिखा और कंपोज किया है। ये धुन आपके दिल में देशभक्ति का एक नया जोश भर देगी। पेश है अंबाला के गौरवशाली इतिहास को समर्पित शहीद स्मारक थीम सॉन्ग सभी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के श्रोताओं।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी
0: दोनों।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ताई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह। रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर। क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
1: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
4: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल आरडी सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहां तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहां बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: राम, अगर हम तुम्हें 5,00,000 रुपया दें तो क्या तुम दूसरा शरीर स्वीकार करोगे?
2: नहीं, कभी नहीं।
1: अच्छा राम, अगर हम तुम्हें 1,01,00,000 तोला सोना दे तो वापस जाओगे?
2: अयू नोको, अगर वो सोना लेके मैं नीचे गया तो वो लोग मेरे को स्मगलर समझ लेंगे।
1: राम, यहाँ। कुछ पियोगे?
2: क्या पिलाएंगे आप मेरे? चाय पिलाएंगे या लस्सी पिलाएंगे?
1: नहीं, सोमरस।
2: सोमरस क्या होता महाराज? अरे अरे, दारू की बात कर रही क्या? किधर की दारू पिलाएंगे? गोलकुंडे की है स्कॉच विस्की?
1: नहीं, ये देवता लोगों का जलपान है, इसको पीने से तुम मत हो जाओगे।
2: मत हो जाऊंगा क्या? नीचे तो मैं कंट्री पीता था खाली। जल्दी पिलाओ महाराज।

0: numărul cacălăr tu Coca-Cola de asta. Maharaj?
1: Bolo.
0: Ek baat yaad aa gayi Maharaj mere.
1: Poocho.
0: Wo hamare niche ye peene ke liye kahin permit hai kahin permit nahi hai. यहाँ का क्या हिसाब किताब है?
1: मगर यहाँ कोई रोकथाम नहीं. ये देवलोक है, यहाँ जी भर के सोमरस पियो, जी भर के सोमरस पियो.
0: एक दूसरी बात भी याद आ गई महाराज.
1: बोलो.
0: इधर आओ. मैं शराब पीने से पहले ही आपको बोल देता हूँ, बाद में आप ये नहीं बोलना कि मैं नशे में बोल रहा
1: हूँ. अच्छा.
0: एक पोटी थी.
1: पोटी?
0: हाँ, मेरा मतलब एक छोकरी थी.
1: अच्छा.
0: उसका नाम था चुनिया.
1: सुनिया.
0: हो. आजकल के जमाने की वो छोकरी थी, उन्हें प्यार मेरे से करती थी, मेरे कंधे पे से किसी दूसरे को देखती थी और उसके दिमाग में कोई तीसरा रहता था, इसलिए उन्हें जल्दी मर गई. अगर आप मेरे को चुनिया से मिला दिए तो मैं बगैर किसी तकलीफ के किसकी भी बॉडी में बोलो घुस जाऊंगा.
1: शाबाश. तो फिर घुस जाओ उन बादलों के झुंड में जहां चुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है. जाओ
2: चुनिया. अरे किधर है रे तू?

ಈ ಕಾಸ್ಲೇ ದಾಲ್ಕೋ ಕೂಗ್ದಾಲೋನಾ ಇಜ್ಜೆ ಮಾಚಿಸಿ ಕಾಂದಿಲ್ಲ.

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो रेडियो वत्तस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ ते सुनते रहो अपने

0: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
1: पेश है प्रोग्राम शाम गजल एपिसोड 2, कलाम भारती रैना। पेश कर रहे हैं आरजे किरनी।
2: सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। पेश है प्रोग्राम शामे गजल। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी है, जो ओरिजिनली रैना वारी श्रीनगर कश्मीर की बाशिंदा है, अब जम्मू में कयाम पजीद है। उनकी लिखी गई गजलों को अपनी आवाज से सजाया है कश्मीर के मायोनाज गुलोकार कैसर निजामी साहब और सुमन पंडिता जी ने। जिंदगी की कहानी में हर पल एक नया रंग है, हम ना रहे तेरे तलबगार पर तू हमेशा संग है, हर मोड़ पर नया सफर साथ संग चले।

कुदरत की तराशी गजल हूँ मैं, दिल के हर धड़कन में बसी कहानी। लोग समझते हैं कुछ नादान हूँ मैं, मेरी शायरी में छुपी है एक मुस्कुराहट रवानी।

0: वैसे ही हो।
1: जिंदगी के कुछ पल हैं ऐसे जिनमें बसी है मीठी मीठी यादें, दिल को छू जाती है वो मीठी से यादों का अफसाना।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शामे गजल। उम्मीद करते हैं आपको ये गजलों का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक 705641301 पर भेज सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

थे प्रोग्राम शामे गजल एपिसोड 2। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी था। पेश किया आरजे किरनी ने, एडिटिंग दीपक कश्यप, हिदायतकार भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विद अ स्टार, हम सफर जिंदगी का।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम सरगम, एपिसोड 8। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आरजे किरनी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और निर्देशन भारत सोपोरी का।
0: नमस्कार, सुस्वागतम। आप सुन रहे हैं सरगम का नया अंक। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी, आपका स्वागत करती हूं इस खास प्रोग्राम में। आज के इस बेहतरीन सफर में हम आपको ले चलेंगे पुराने गानों की याद में। कार्यक्रम की पहली पेशकश है फिल्म सहरा के गाने से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और जिसके बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और म्यूजिक दिया है रामलाल ने।

लीजिए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत, जिसे संगीत दिया है रोशन ने और फिल्म ताजमहल से।

लीजिए अब सुनते हैं रवि का संगीत बद्ध गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने फिल्म दो कलिया से, और उसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।

0: अब पेश है फिल्म तलाश का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसके बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और म्यूजिक दिया है SD बर्मन ने।
1: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना।

0: चला फिर से तो फरमाना।
1: अगले गाने के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म इंतकाम से।

लीजिए आप सुनते हैं जाने अनजाने फिल्म का गाना, गुलशन बावरा का लिखा हुआ, संगीतकार शंकर जयकिशन और आवाजें दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है रविंदर जैन, राजकवि और इंद्रजीत सिंह का लिखा गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने फिल्म चोर मचाए शोर से, जिसको संगीत से सजाया है रविंदर जैन ने।

अगली पेशकश है साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गाना, जिसके संगीतकार है खयाम और जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने फिल्म कभी कभी से।

अब पेश है फिल्म जमाने को दिखाना है का गाना, जिसके संगीतकार है आरडी बर्मन, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और अपनी आवाज से सजाया है शैलेंद्र सिंह ने।

लीजिए यह पेज है किशोर कुमार का गाया हुआ गाना, जिसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और उसका संगीत दिया है खयाम ने, फिल्म कभी कभी से।

अगला गाना है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार है वर्मा मलिक। फिल्म जानी दुश्मन से।

0: अब आपको सुनाते हैं फिल्म बैरा का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने फिल्म बैराग से।
1: सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं।

खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: इसके करता हूँ आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इसके करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
1: ऐसी भी हो तुम

0: सभी श्रोताओं के नजर आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत, जिसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, जिसे संगीत दिया है रवि ने, गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, फिल्म एक महल हो सपनों का। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: एक महल हो सपनों।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 8। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और निर्देशन था भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो या...

आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं मिले जुले गीतों के इस प्रोग्राम के साथ। हर अमावस को तुम्हारा इंतजार, मेरी हर पूनम रात को अमावस कर गया। मैं हूं रमेश मराठ।

कच्ची मिट्टी के रिश्ते मुश्किलों की आंच में तपकर पक जाते हैं जब सदियों तक निभ जाते हैं।

साहिल से छूकर लौट जाते हो सागर में, और मेरे मन की भीगी रेत पर खेलते यादों के बच्चे उम्मीदों के घरौंदे बनाते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन अब इनका रोज रोज बनना टूटना बच्चों का खेल नहीं रहा।

फरिश्ते अगर रास्ते हो जाते, खत्म बीच के फासले हो जाते, मैं और एक तू मिलकर हम मोहब्बत के काफिले हो जाते हैं।

अंधेरों में परछाइयों की तरह घुल गए थे, अब जुदाई की धूप में हो गए हैं अलग अलग, अलग अलग परछाइयों की

जो बरसों से बस गई है उसके सीने में जागती है तमाम रात, झील के सीने पर इठलाती बलखाती चलती यादों की लकीरें, जो मुझे न सोने देती है न रोने देती है।

दोस्तों, मिले जुले गीतों का ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत, जरूर बताइएगा आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। आदाब, नमस्ते।

आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी। आप सभी से माफी चाहूंगा क्योंकि मेरा गला आज मेरा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए कोशिश करूंगा कि वही बात करूंगा जो बहुत जरूरी है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:40। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आपके अपने रेडियो विदस्ता पर आप मुझे सुन रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज दिन के प्रसारण में जो हमने कार्यक्रम प्रस्तुत किए आप सभी को पसंद आए होंगे। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ पूरे दिन रहने के लिए और इंतजार अगले दिन का करने के लिए। दिन भर के नगमों और बातों के बाद अब समय है रेडियो विदस्ता पर आज के इस खूबसूरत सफर को थामने का। लेकिन विदा लेने से पहले आइए संक्षिप्त में जाने 24 अगस्त 2026 का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व। पहला सावन का अंतिम चौथा और सोमवार। ये सावन यानी श्रावण महीने का आखिरी सोमवार है, इसलिए सावन सोमवारी व्रत और शिव पूजा का समापन इसी दिन के साथ होता है। दूसरा, शिवराम राजगुरु, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और सुखदेव के साथी का जन्म 24 अगस्त 1908 को हुआ था। हम रेडियो विदस्ता टीम की ओर से और सभी श्रोताओं की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन महान सपूतों को जिन्होंने युवा अवस्था में इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम शत शत नमन करते हैं उन पुण्य आत्माओं को। अब वक्त आ गया है कि हम आज के इस प्रसारण को यहीं रोकें। वितस्ता की पावन लहरों की तरह हमारा और आपका यह रिश्ता सदा यूं ही बहता रहे, इसी कामना के साथ समर्पित है ये पंक्तियां आप सभी के लिए। पंक्तियां यूं है, कल फिर मिलेंगे इसी मोड पर नई उम्मीदों की लेकर मिठास। कल फिर मिलेंगे इसी मोड पर नई उम्मीदों की लेकर मिठास। वितस्ता की लहरों में बहती रहे हमेशा खुशियों की एक आस। वितस्ता की इस मधुर तान में बसा है हर दिल का प्यार। वितस्ता की इस मधुर तान में बसा है हर दिल का प्यार। रेडियो वितस्ता 90.0 संग सजा रहे आपका हर संसार। जी हाँ दोस्तों, रेडियो वितस्ता 90.0 संग सजा रहे आपका हर संसार। दोस्तों ये थी आज की पंक्तियां, और जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 25 अगस्त 2026 मंगलवार को हमारी सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर। वंदे मातरम से हम शुरुआत करेंगे, लाएंगे आपके लिए एक सुविचार। पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे सुनेंगे भक्ति संगीत, 7:05 पर कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 7। 8:30 बजे सकारात्मक कहानियों का एपिसोड 25 होगा, और कार्यक्रम सकारात्मक कहानियों के बाद 9:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 14 रोशन पर तैयार किया गया कार्यक्रम, पेश करेंगे आरजे किरणी। 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 9, सुरेंद्र कुमार के साथ की गई बातचीत, प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी। संगीत की सभा जारी रहेगी, 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल, 7 बजे रेट्रो हिट्स, और 8:30 बजे सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है देव आनंद। उम्मीद करते हैं कि आपको कल के कार्यक्रम भी पसंद आएंगे। आप अपना फीडबैक हमें भेजिएगा हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7054131010। अब अपने दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। अब आप सब से आज्ञा लेने से पहले प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे। कल सुबह तक के लिए शुभरात्रि, जय हिंद,
वंदे मातरम, नमस्कार।